मिड वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी आदरणीय श्रोताओं का इस प्रातःकालीन सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हम उन सभी श्रोताओं का भी विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं जो हमारे इस प्रसारण को न्यूज़ ऑन EIR ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं।

0: मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आइए सुनते हैं समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता। वरिष्ठ नौकर

0: शाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं देशगान समूह स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशकान समूह सरो में भक्ति संगीत की आराधना कार्यक्रम में। अब बढ़ते हैं ईश्वर की भक्ति की ओर और इसमें अब आपको सुनवा रहे हैं ये हरि भजन, आवाज पंडित भीमसेन जोशी की है।

भक्ति ईश्वर से जुड़ने का सबसे सच्चा और सरल साधन है। जब मन श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है, तब ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति वह भावना है जो मनुष्य को अहंकार से दूर कर विनम्रता, करुणा और सद्गुणों की ओर ले जाती है। तो आइए इस प्रातःकालीन बेला में करते हैं ईश्वर की सच्ची भक्ति।

अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये कृष्ण भक्ति गीत। जब मन में भक्ति का भाव जागता है तब हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है और यही सच्ची भक्ति है। आइए सुनते हैं भजन। आवाज अनुराधा पौडवाल की है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री हनुमान जी की आरती। इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का शीर्षक है आत्मविश्वास। वाचन और संकलन है मृदुल गुप्त का।
1: मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो अपने भीतर असीम संभावनाओं का भंडार होते हुए भी भय और संदेह के जाल में उलझकर स्वयं को सीमित कर लेता है, जबकि सच यह है कि सफलता किसी बाहरी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर पलने वाले विचारों, भावनाओं और संकल्पों की स्वाभाविक परिणति है। जो व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस जुटा लेता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूने में समर्थ होता है। भय मनुष्य का सबसे पुराना साथी है। कभी असफलता का भय, कभी समाज की आलोचना का भय, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता का। भय का स्वभाव ही ऐसा है कि ये हमारे मन में संदेह को जन्म देता है और संदेह धीरे धीरे आत्मविश्वास को क्षीण करता चला जाता है। जब मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, तभी हमारी हार का आरंभ हो जाता है। मगर जीवन की दिशा वही व्यक्ति बदलता है जो इस प्रश्न को चुनौती में बदल देता है। वो कहता है कि मैं अवश्य करूंगा। यही आत्मविश्वास का स्वर है जो भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर करती है। जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है तब वो परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। हमारा मन एक उर्वर भूमि के समान है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वही फलित होता है। अगर हम इसमें भय, नकारात्मकता और संदेह के बीज बोते हैं तो परिणाम स्वरूप निराशा, असफलता और असंतोष की फसल उगती है। इसके विपरीत यदि हम अपने मन में साहस, आशा और श्रेष्ठ लक्ष्य के विचारों को स्थिर रखते हैं तो यही विचार हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें सफलता के पथ पर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का अटल सत्य है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संतुलित और दृढ़ बनाए रखता है वही विजयी होता है। सकारात्मक सोच हमें ये सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है और हर संघर्ष के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। आंतरिक शक्ति का जागरण भी इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम अपने भीतर के भय और संदेह को त्याग कर आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपनाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति स्वतः जागृत होने लगती है। ये शक्ति हमें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखती है। यही आंतरिक शक्ति हमें विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण जीवन में ये विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब चारों

0: तुलना, आलोचना और अनिश्चितता का वातावरण हो, तब अपने भीतर विश्वास बनाए रखना चुनौती बन जाता है। मगर यही वो समय होता है जब हमें अपने मन को सशक्त बनाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि दूसरों की राय हमारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी वास्तविक पहचान है। इस बात की जरूरत है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और संकल्प को दृढ़ बनाए रखें। भय और संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बनाएं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वास्तव में सफलता उसी के कदम चूमती है जो अपने मन की सीमाओं को तोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारी सोच ही हमारा पथ प्रदर्शक है। अगर ये सोच साहस, आशा और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में वाचन और संकलन था मृदुल गुप्त का। शीर्षक था आत्मविश्वास। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत बारगांवकर का है। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे 100वां भाग,
2: एपिसोड 100।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईक की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए खेती की बात। जानकारी का विषय है चने की लाभकारी खेती। वाचन विनितेश गुप्त का है।
1: किसान भाइयों, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होने के कारण दालें हमारे भोजन में विशेष स्थान रखती हैं। प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों की खेती की जा रही है। आज हम बात करेंगे चने की उन्नत कास्त के बारे में। भूमि का चयन। किसान भाइयों, चने की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में सफलतापूर्वक की जा सकती है। यदि सिंचाई साधन पर्याप्त नहीं है तो चने को भारी मिट्टी में तथा सिंचाई साधन पर्याप्त होने पर चने को हल्के मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। कन्हार भूमि चने की कास्त के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भूमि की तैयारी। चने की फसल को बहुत अधिक भुरभुरी जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। 2-3 जुताई कर मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़कर पाटा चला लें ताकि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे। यही नमी चने का अच्छा अंकुरण सुनिश्चित करती है। यदि भूमि का पीएच मान 6.5 से कम है तो भूमि की अम्लीयता में सुधार हेतु बुझा हुआ चूना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाएं। बुआई का समय। किसान भाइयों, चने की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करने से फसल को ठंड की लंबी अवधि मिलती है और उपज अच्छी प्राप्त होती है। यदि बुआई में देरी हो गई है तो बुआई 10 दिसंबर तक पूर्ण कर ही लें। विलंब से बुआई करने पर कीट का प्रकोप अधिक होता है। बीज की मात्रा एवं दूरी। समय से बुआई करने पर 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा विलंब से बुआई करने पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपयोग करें। कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीजोपचार। बुआई से पूर्व 3 ग्राम थायरम या 1.5 मिलीलीटर कंटाफ या कार्बेंडाजिम व मैंकोजेब मिश्रित फफूंदनाशी 3 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से बीजों को उपचारित करें या जैविक फफूंदनाशी 3 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से बीजों को उपचारित करें। सिंचाई। किसान भाइयों, चने की फसल जल भराव को लेकर बहुत संवेदनशील है और यदि पर्याप्त सिंचाई करने के पश्चात उत्तम जल निकासी का प्रबंध नहीं है तो अंकुरण तो प्रभावित होगा ही, साथ ही उकठा रोग के फैलाव की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ेगी। चने की फसल में मुख्यतः 2 सिंचाई पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई फूल आने से पहले यानी बुआई के लगभग 40 दिन बाद एवं दूसरी दाना भरते समय यानी बुआई के 75 दिन बाद दें। पुष्प फूल आने के बाद सिंचाई करने पर फूल झड़ने की समस्या आती है और यदि दूसरी सिंचाई दाना भराई के समय ना दी जाए तो दाना पोचा रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। चने में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। चने में हमेशा हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर या सीपेज पद्धति से करनी चाहिए। निंदाई गुड़ाई एवं अन्य शस्य क्रियाएं। चने में निंदा जैसे भतुआ, सेंजी आदि फसल के शुरुआती दिनों में फसल की बढ़वार पर भी

0: विपरीत प्रभाव डालते हैं। अतः खेत की शुरुआती 45 दिनों तक निंदा मुक्त रखना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले निंदा के लिए पेंडीमेथिलीन 30 ईसी 750 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर सक्रिय तत्व का छिड़काव बोनी के 3 दिनों के अंदर प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए एवं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों जैसे सावा, घास, कांस, दूब आदि के लिए क्यूजोलोफोप 40 से 50 ग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बोनी के 15 से 20 दिनों बाद करना चाहिए। चने की फसल 25 से 30 दिन की होने के पश्चात उसकी खुटाई करना लाभदायक होता है। इससे इसमें शाखाओं की संख्या बढ़ती है जिससे उपज बढ़ती है और पौधे का घेराव भी बढ़ता है जो निंदा की बढ़वार को नियंत्रित भी करता है। चने में कीट नियंत्रण। चने की इल्ली, इस कीट की हानिकारक अवस्था इल्ली होती है। छोटी इल्लियाँ पौधों की मुलायम पत्तियों को खाकर क्षतिग्रस्त करती है एवं मध्यम आकार की इल्लियां फली को छेदकर उनमें विकसित हो रहे दानों को अपना आहार बनाती है। प्रबंधन। खेत में 1 मीटर ऊंची खूंटियां 50 नग प्रति हेक्टेयर की दर से गड़ा देने से पक्षी उस पर बैठकर इल्लियों का भक्षण करते हैं। चने की उन्नत कास्त का उपयोग करने से भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। चने का कटुआ, यह रात्रिचर कीट है जिसकी इल्लियां पौधे को सतह से अथवा कोमल टहनियों का काट काट कर जमीन पर गिरा देती है जिसके कारण पौधों की बढ़वार व उपज में कमी आ जाती है। प्रबंधन। शाम के समय खेत के आसपास घास का ढेर लगा दें ताकि इल्लियां उनमें छुप सकें तथा अगले दिन दोपहर के वक्त इन ढेरों में आग लगा दें। किसान भाइयों, इस तरह से कुछ सावधानी के साथ चने की खेती हमारे लिए लाभदायक हो सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात, जानकारी का विषय था चने की लाभकारी खेती। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे ठुमरी गायन। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे गूंजे जंगल कार्यक्रम सुबह 7:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 7:30 पर आपको सुनवाएंगे नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। 8:30 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम। रायपुर केंद्र से ही अनुप्रसारित करेंगे 9:00 कार्यक्रम बातों बातों में। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे 9:15 पर। 10:00 आनंद लीजिएगा नए तराने कार्यक्रम का। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे 11:05 पर। दोपहर 12:00 मिश्रित गीत संगीत कार्यक्रम का सब रंग। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कव्वालियां। दिन में 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर शहरी महिलाओं का कार्यक्रमों का घर आंगन। बातचीत होगी विश्व शरणार्थी दिवस, शिक्षा से महिलाओं में आत्मनिर्भरता। साथ ही सुनेंगे शक्ति अभिव्यक्ति क्रम, व्यंजन विधियां, गीत संगीत। दिन में 1:40 पर ईमेल की गूंज कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गीत गंधा कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी

0: आप सुनेंगे शाम 5:30 पर, शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोदली, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी, शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर, इसलिए शाम 7:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। यदि श्रोताओं हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, प्रातः के 6:55 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: FM गोल्ड पर
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्मदिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री PM कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोषेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। NTA इति राष्ट्रिय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः NEET UG 2026 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले NTA संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रत्यपादीत यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता, सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारतामेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति, तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां 400+2,000 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति AS चंद्र चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति।

0: फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम् 1-0 अंकांतरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर मध्ये तृतीया अंतिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितंबरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी संस्कृत समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 7 बजे ही लीजिए सुनिए लोकगीतों कार्यक्रम गूंजे जंगल। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं सरगुजिया लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फूलचंद राजवाड़े और साथियों का गाया झोलकारी कर्मा गीत।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गुंजी जंगल कार्यक्रम में अब सुनिए जगमोहन राजवाड़े और साथियों का आया ये सरगुजा लोकगीत रूप में रामचर्चा कर्मा गीत।

गुंजी जंगल कार्यक्रम के अंत में सुनिए धर्मेंद्र प्रसाद और साथियों गाया सरगुजा लोकगीत के रूप में ये देवी भजन।

अभी आप सुन रहे थे धर्मेंद्र प्रसाद और साथियों का गाया ये देवी भजन। इसी के साथ गूंजे जंगल कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मिडवे

कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत। गीत जावेद अख्तर ने लिखा है, संगीत है उत्तम सिंह का।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये गजल, आवाज है चित्रा सिंह की, संगीत कुलदीप सिंह का, कलाम है जावेद अख्तर का।

0: इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम
1: से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
0: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।

नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूँ आप सभी का रेडियो दोस्त तरुण। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में हम हर रोज लाते हैं आपके लिए नई नई सूचनाएं, लेकिन कार्यक्रम से संबंधित एक सूचना हम आपको हर रोज देते हैं। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। आइए कार्यक्रम से संबंधित इस जानकारी के बाद अब बढ़ते हैं अगली सूचना की ओर। कलेक्टर के निर्देशन में जिले में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण के लिए सतत निगरानी रखते हुए अवैध कार्यों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की टीम द्वारा राजपुर विकासखंड अंतर्गत सिंहचोरा एवं गोपालपुर ग्राम स्थित महानदी क्षेत्र में सघन जांच के दौरान टीम ने महान नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज रेत से भरे 3 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों के पास वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आइए इस सूचना के बाद आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आइए बढ़ते हैं अगली सूचना की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की राशि DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। ये एक अच्छी खबर है किसानों के लिए। और योजना के तहत जिले के 61,357 पात्र किसानों के खातों में कुल 12,27,00,000 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। इस राशि से किसानों को कृषि कार्य, बीज, उर्वरक तथा अन्य कृषि निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। और ये एक अच्छी राशि है जिससे किसान भाई अभी खेती के कार्यों में बीज, उर्वरक और अन्य संबंधी चीजें खरीद सकेंगे इस राशि की सहायता से। और अभी मानसून आ ही चुका है और ये राशि इस समय बहुत ही लाभदायक होगी। तो आइए इस अच्छी सूचना के बाद हम आपको सुनवाते हैं हम सब उस्ताद हैं फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की है।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगली सूचना, राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उन्नति योजना के स्वरूप में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत धान के स्थान पर अन्य खरीफ की फसल लेने वाले कृषकों को तथा पूर्व से ही खरीफ में दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी और कपास लेने वाले कृषकों को आदान सहायता राशि दी जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशानुसार कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्री स्टेक पर पंजीयन कराया है। एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे समस्त कृषक जिनके अंतर्गत विगत खरीफ में धान की फसल लेने वाले ऐसे कृषक जिन्होंने आगामी खरीफ में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने हेतु पंजीयन कराया है, खरीफ में दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी और कपास की फसल लेने वाले हेतु पंजीयन कराया है, उन्हीं किसानों को ये सहायता राशि प्राप्त होगी। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्री स्टेट पर पंजीयन कराया है और वो धान के स्थान पर दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी और कपास की फसल उगाते हैं तो उन्हें ये सहायता राशि दी जाएगी और ये किसान भाइयों के लिए अच्छी सौगात है और इसे फसल चक्र में भी एक अच्छी पहल मानी जाती है और इससे जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो आइए इस अच्छी सूचना के बाद आपको सुनवाते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत, आवाज़ मुकेश की है। तो आइए सुनते हैं ये गीत। और जब जब हमारे किसान भाई ऐसी योजना का लाभ उठाते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है।

साथियों, हमारे बीच अभी एक बहुत ही अच्छा सप्ताह मनाया जा रहा है और ये विशेष सप्ताह है नशा मुक्ति भारत सप्ताह, जिसे 17 जून से 26 जून तक मनाया जाएगा। नशे के विरुद्ध जन जागरूकता का व्यापक अभियान चलाते हुए जिला मनिंदगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 17 जून से 26 जून तक 2026 तक नशा मुक्ति भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा युवाओं को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को अभियान से जोड़ते हुए 10 दिवसीय विशेष कार्य योजना लागू की गई है। अभियान के तहत विद्यालयों में नशा मुक्ति शपथ निबंध लेखन, स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नेत्रहीन विद्यालयों में वंदे मातरम गीत नारा लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा अभियान है, हम सबको इस अभियान से जुड़ना है और नशे के विरुद्ध हम सबको शपथ लेनी है कि हम सबको नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब जब ऐसे सप्ताह चलाए जाते हैं तो एक जागरूकता बढ़ी जाती है कि नशा बहुत ही गलत चीज़ है, इसे करने से कई परिवार टूट जाते हैं और नशा करने से स्वास्थ्य काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। आइए इस सूचना के बाद आपको सुनवाते हैं आज़ाद फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सी रामचंद्र की।

0: जी हाँ दोस्तों, बारिश के गिरने से मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। इसी के साथ आज का नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम बस यहीं तक।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
0: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।
0: नमस्कार सरगुजा के अंक में आपके साथ था ये आपका रेडियो दोस्त तरुण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले समाचार प्रभात, फिर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे।

0: इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काश्मीर नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत

0: हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बदलाव कोई संकेत जरूर देता है। जरूरत है उस बदलाव को समझ पाए, क्योंकि सेहत जरिया है खुद से जुड़ने का। कभी बिना वजह वजन बढ़ना, कभी पीरियड्स की अनियमितता, कभी चेहरे पर अनचाहे बाल या मुहासे, या कभी मां बनने को लेकर चिंता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव के बीच महिलाओं में ये समस्या तेजी से सामने आ रही है। PCOS ये क्या है, क्यों होता है, इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ा जाए, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आंचल अग्रवाल, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए।
0: तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे PCOS क्या है।
1: जी, PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। लेकिन जैसे कि आज आपको पता भी होगा, अब इसका नाम चेंज हो गया है। हम पहले भी जब इसकी बात करते थे या पेशेंट को समझाते थे तो हम इसको बोलते थे ये एक मिसनॉमर है, मतलब पॉलीसिस्टिक बहुत सारे सिस्ट होना इसका आम भाषा में मतलब। लेकिन ऐसा नहीं होता था, हमारी बॉडी में ये नहीं होता कि ओवरी में सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट नहीं हुआ करते थे। तो अब बहुत सालों बाद में इसका नाम फाइनली चेंज होकर के सही तरीके से आया है, और वो है PMOS, मतलब पॉली एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिर्फ और सिर्फ ओवरी की डिजीज नहीं है, ये एक एंडोक्राइन डिजीज भी है, रिप्रोडक्टिव डिजीज भी है, और इसका ताल्लुक सिर्फ ओवरी से नहीं है, हमारे एंडोक्राइन हार्मोनल प्रॉब्लम से भी है। तो ये सीधे दिमाग से लेकर के ओवरी तक जो साइकिल चल रहा है हमारा, ये सबको इफेक्ट करती है। तो अब इसके नाम में ही हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी कितनी बड़ी है। बड़ी बीमारी का इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंसर की तरह है, इससे घबराना नहीं है, बस कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें सही टाइम पे पहचानना है और उसके बाद हमें उसका ट्रीटमेंट लेना है।
0: जी, तो डॉक्टर साहिबा, PCOS के मुख्य लक्षण जो हम, जैसा आप कह रहे थे सिम्टम्स होते हैं, तो मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
1: जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि PCOS कितना कॉमन है। पहले के जमाने में अगर हम देखें, जैसे कि हमारी मम्मी जो हुआ करती थी, मम्मी, दादी, नानियां, उनके जमाने में PCOS शायद ही किसी ने सुना होगा या किसी ने अनुभव किया होगा इस चीज को, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता था। और हम सबको ही को अभी पता है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो PCOS का मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है पीरियड्स अनियमित होना, यानी कि कभी 15 दिन में पीरियड्स आ जाना या कभी 1.5 महीने में, 2 महीने में पीरियड्स आना। दूसरा होता है कि अनचाहे बाल उगना, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ हम इसको बोलते हैं, जहां हमें बाल चाहिए तो वहां से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और अनचाहे ग्रोथ चेहरे पे, जैसे मेल्स का बियर्ड होता है, दाढ़ी होती है, उस जगह पे हमारे बाल आना शुरू हो जाते हैं, छाती में, पेट में, बगलों में, ये सब जगह पे बाल एक्सेस में आते हैं और बहुत मोटे होते हैं वो बाल। दूसरा होता है बहुत सारे मुहासे आने, चेहरे पे पिंपल्स होना। तीसरा होता है कि स्किन जो है बहुत ब्लैक हो जाती है हमें, हमारे गले के पीछे में, इसको एकेंथोसिस नाइग्रेंस बोलते हैं। हिर्सुटिज्म होना, हमारी आवाज जो है वो मोटी हो जाती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा वजन काफी बढ़ने लगता है, मोटापा। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बच्चे करने में दिक्कत होती है, पर ऐसा नहीं है कि ये बांझपन लेके आता है, लेकिन हाँ जरूरी है, बच्चे करने में ये दिक्कत होती है, सही टाइम पे ट्रीटमेंट से बच्चे हो भी सकते हैं इसमें। ये सब तो हुआ हमारा एडोलेसेंट और रिप्रोडक्टिव के टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है, बट PCOS सिर्फ इसी में सीमित नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है, तो फ्यूचर में जाकर के हमें डायबिटीज होने का खतरा होता है इसकी वजह से, हाइपरटेंशन होने का खतरा होता है, डिसलिपिडीमिया, लिपिड्स में प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी के अंदर की परत का कैंसर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है इसमें।
0: जी, तो बहुत सारे लक्षण आपने बताए, तो हमें लगता है कि अगर किसी भी महिला में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास जाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, अब हम जानना चाहेंगे कि PCOS होता क्यों है, क्या वजह है इसके?
1: जी, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है एक जेनेटिक है, ये अनुवांशिक होता है, तो जीन्स के कारण में आने वाले जेनरेशन में ये PCOS दिखाई देता है।

0: और दूसरा होता है हमारा लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो सेडेंटरी हो गई है तो हमारे अंदर मोटापा पहले से ही बढ़ रहा है, हमारा खान पान चेंज हो रहा है, प्लस इंसुलिन रेसिस्टेंस इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो सबको पता भी होता है लेकिन कोई उस पर वर्क नहीं करते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के कारण ये पीसीओएस भी होता है और वजन भी हमारा बढ़ता है। और बाकी है आजकल बहुत सारे टॉक्सिन्स, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे टॉक्सिन्स होने लग गए हैं हर चीज़ों में, फलों में मिलावट हो रही है, हम इतने केमिकल्स यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, पाउडर्स यूज़ करते हैं, सब में एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल हार्मोनल मिल्यू जो होता है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक एंडोक्राइनो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जो हम सिंपल सी चीज है कि हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी, सिम्टम कम हो जाएगा। इसको कभी हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, तो वो जीन तो आपकी बॉडी में आ चुके हैं तो वो तो रहेगा ही, लेकिन हाँ बस ये है कि हम अगर इसको मेंटेन करें, सही टाइम पे जो दवाइयां हमें डॉक्टर ने बताया गया है वो ले और अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली सुधार के रखे तो ये चेक में रह सकता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जब हम गर्भ में होते हैं अपनी माँ के, तो उस समय अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कोई प्रॉब्लम हुआ है, या कि आयुजीआर एक हम वर्ड यूज करते हैं, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब फीटस का जो बच्चा भ्रूण होता है उसका वजन अगर बहुत कम है या वजन अगर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी उसको पीसीओएस होने के चांसेस होते हैं। अगर मदर को डायबिटीज हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान में, या फिर ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले मदर डायबिटिक थी, तब भी बच्ची को पीसीओएस, अगर लड़की है तो उसको पीसीओएस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भ्रूण में भी डिसाइड हो जाता है कि आपको फ्यूचर में जाकर के ये प्रॉब्लम्स होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मम्मी पापा के साथ में आपके मामा मामी या दादा दादी किसी को भी
1: वगैरह को
0: जी किसी को भी शुगर है या कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तब भी उस बच्ची को पीसीओएस हो सकता है।
1: जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी कि पीसीओएस क्यों होता है। वैसे हर चीज के लिए अगर हम सोचें तो संगीत की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो मानसिक शांति देता है, किसी भी समस्या का एक हल्का सा हल जो है वो संगीत में भी छुपा हुआ है। तो हमारे श्रोताओं को आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहती हैं ये बताइए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।
0: जी, जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: इस गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर की सलाह में। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल अग्रवाल, जिनसे बहुत ही रोचक बातचीत हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर डायबिटिक है तो बच्ची को, अगर बच्ची होती है तो उसको ये समस्या हो सकती है
1: जी।
0: तो जिनकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा है, वजन थोड़ा ज्यादा है, जो थोड़ी सी मोटी हैं, क्या उनको ये समस्या ज्यादा होती है?
1: ये जरूरी नहीं है कि जिनका वजन ज्यादा है ये उन्हीं को हो। पीसीओएस जो है, लीन पीसीओएस भी, मतलब पतले लोगों में भी पीसीओएस देखा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये मोटापा बढ़े तभी उनको पीसीओएस होगा। पतले लोगों में भी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जेनेटिक प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रियम कोई प्रॉब्लम आई है तो उनको भी ये पीसीओएस हो सकता है।
0: तो पीसीओएस होने के बाद क्या गर्भ धारण करना संभव है?
1: बिल्कुल संभव है। मैंने जैसे कि बताया थोड़ी देर पहले, थोड़ी दिक्कतें आती है क्योंकि उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, महीना जो है समय से नहीं आ रहा है। और समय से नहीं आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडे नहीं बन रहे हैं अच्छे। जो हम पहले बात करते थे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, तो हम यही कहते थे कि आपकी बॉडी में सिस्ट नहीं है, ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं जो कि मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली। फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं तभी वो अंडे में फूटते हैं, तो वो अंडा बन ही नहीं रहा है, इसीलिए उनका मासिक धर्म जो भी है वो अनियमित हो रहा है। तो हमें पहले उनको ऐसी दवाइयां देनी होती है जिससे उनका मासिक धर्म नियमित हो। उनको लाइफस्टाइल के बारे में सजेस्ट करते हैं हम, वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। अगर वजन ज्यादा है तो उनको वजन कम करने की सलाह हम देते हैं।

0: या फिर अगर पतले लोगों में ये पीसीओएस है तो उनको भी एक्सरसाइज करना होता है, क्योंकि उससे उनका मेटाबॉलिज्म सही होगा तो आसपास में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होगा, एंड्रोजन हार्मोन कम होगा उनकी बॉडी में, तो अंडे अच्छे से बनेंगे, ओव्यूलेशन प्रॉपरली होगा, फिर ऑटोमेटिकली उनके साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में वो खुद से भी कंसीव कर सकती है बिना कोई सहायता के, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल सुधार ले और कुछ मेडिसिन ले ले। तो अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो हमारे पास और भी दूसरे तरीके होते हैं, जैसे कि अंडे बनने की दवाइयां देना, ओव्यूलेशन इंडक्शन से उनको प्रेगनेंसी धारण करवाना या IUI करना, तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज करना बेसिकली उनके में।
1: जी, पीसीओएस का निदान कैसे किया जा सकता है?
0: जी, अभी तक मैं हर बार ये बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल, तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है, बट ये कहना बहुत आसान होता है कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए तो आपका पीसीओएस सुधर जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें पेशेंट से बात करना है कि उनका दिनचर्या कैसा है, वो सुबह से उठ करके रात तक क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं और उनकी हॉबीज क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पीसीओएस है, आप जाकर के ये एक्सरसाइज करिए, आप हो सकता है कि हफ्ते दो हफ्ते मेरी बात माने, फिर आप नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका बिजी लाइफ शेड्यूल है।
1: ऐसा बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि कोई भी सलाह अगर डॉक्टर देते हैं खासतौर पे एक्सरसाइज करने की, कुछ दिन तो वो चलता है लेकिन उसके बाद फिर लगता है क्या एक्सरसाइज करना, वो फिर अपने जैसा उनका
0: जैसा रूटीन है वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है पहले हम वो जाने, और उनके लाइफस्टाइल में वो डाइट फिट करे। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अंडे खाइए, आप वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियसली आप अंडे नहीं खाएंगे। तो हमें पेशेंट के हिसाब से उनको लाइफस्टाइल के लिए प्रॉपर गाइड करना है। तो ये सिर्फ एक अकेले गायनेकोलॉजिस्ट का काम नहीं होता है, इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लाइफस्टाइल के कोच होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, ये सब कोई अगर मिलजुल करके उस पेशेंट पे काम करे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और उनका पीसीओएस का सिम्टम्स जो है कम हो जाता है। तो हमें उनकी दिनचर्या सुधारनी है, जो भी उनकी दिनचर्या में गलत हो रहा है उनको हेल्दी डाइट की सलाह देनी है, जो भी वो खा रहे हैं उसमें से हमें उन्हें बताना है कि उसमें उनको क्या कट करना है और क्या ऐड करना है। बेसिकली हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट कम करना है, प्रोटीन ज्यादा करना है, बट उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको सलाह देंगे। एक्सरसाइज भी, हम सिर्फ एक्सरसाइज बोल दी तो वो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो महिला कहां से आ रही है, गांव से आ रही है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, किस क्लास से बिलोंग करती है। कुछ लोगों को जिम जाना पसंद होता है, कुछ लोग घर पे ही करते हैं एक्सरसाइजेस, और अगर मैं गांव वालों को बोलूंगी कि आप एक्सरसाइज करो तो उनको ये सारी चीजें जैसे भी नहीं समझ में आनी है। तो उनके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे व्यायाम होते हैं जो हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो हर पेशेंट के लिए उनके अकॉर्डिंग हम चीजें वो बताएंगे, और प्लस कुछ मेडिसिन होते हैं जिनके में अगर प्रॉपर इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, हम पहले उनका टेस्ट करेंगे। अगर शुगर के चांसेस हैं, प्री डायबिटिक हैं या मोटापा बहुत ज्यादा है, तो हम उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए उनको दवाइयां देंगे। उनके हिर्सुटिज्म, एक्ने बहुत ज्यादा है तो एंटी एंड्रोजेंस भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो मेडिसिन से और लाइफस्टाइल से, ये दोनों को मिक्स करके हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में उनको ट्रीट कर सकते हैं।
1: जी, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि गांव की महिलाएं हैं तो वो तो वैसे ही बहुत काम करती हैं, उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, है ना। शहर की जो महिलाएं हैं, अगर वो ऑफिस जॉब में है तो लगातार अगर बैठ के काम करना पड़ता है तो वो काम तो वो भी कर रही हैं लेकिन वो बैठे बैठे काम कर रही हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि गांव का या शहर का होना मायने नहीं रखता, ये किसी को भी हो सकता है?
0: किसी को भी हो सकता है, क्योंकि अब वैसा गांव में भी उतना ज्यादा काम नहीं देखा जाता है, तो उनका भी लाइफस्टाइल अब वैसा नहीं रहा जो हम पहला सोचे करते थे। तो लाइफस्टाइल अब चाहे गांव हो या शहर हो, सबकी खराब हो चुकी है। तो वही चीज जब हमें सुधारनी है, जो हम पहले बोलते थे, हमारे दादी नानियां जो बोला करती थी कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, शाम के 6-7 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है, तो ये सारी चीजें हमें वापस लेके आनी है। जो चीज हमारे हाथ में है उतना हम कर सकते हैं, बाकी जो मिलावटें हो रही है, टॉक्सिन्स आ रहे हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई स्थायी इलाज है?
0: मैंने आपको बताया है पहले भी, इसका परमानेंट इलाज नहीं है, बट हाँ, इसके लिए अभी भी खोज चल रही है, लेकिन सारे सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल में कर सकते हैं हम, और अब प्रॉपर तरीके से सलाह ले रहे हैं डॉक्टर से, प्रॉपर उनके उसमें हैं, तो हम इसका सिम्टम्स जो है सब चेक कर सकते हैं, मतलब कि सब कुछ नियंत्रण हो सकता है।
1: खान पान की शैली या

0: जो मोटापा बढ़ रहा
1: जी,
0: है,
1: जी.
0: तो कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को ये लगता है कि मैं तो ज्यादा खाती भी नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा खाना नहीं खा रही हूँ या इधर उधर की चीजें नहीं खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है. तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है. अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी महिलाएं जैसे खास तौर से पीरियड्स की बात करें तो अनियमितता होने पर वो थोड़ा संकोच करती हैं, घर में भी वो नहीं बताती, डॉक्टर के पास तो बहुत दूर, मतलब डॉक्टर के पास जाने के नाम से ही वो घबराने लगती हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत सारी गलत धारणाएं भी समाज में बनी हुई हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा. और इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूंगी कि यूजुअली जो हम एडोलिसेंट की बात करते हैं, जब बच्चों का पीरियड स्टार्ट होता है तो उनके में पीरियड्स और ऐसे ही अनियमित रहते हैं, या फिर जब पीरियड्स बंद होने वाला रहता है महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम, तब भी पीरियड्स अनियमित होते हैं, तो इसको वो लोग नॉर्मल है मान लेते हैं. बच्चे भी मान लेते हैं कि ये तो होता ही है, या उनके घर में उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं, या फिर जो पेरीमेनोपॉज में महिलाएं हैं उनको भी ये बोला गया होता है, या फिर उनको भी ये धारणा होती है कि हमारे भी पीरियड्स अनियमित होंगे, उसके बाद फिर बंद हो जाएंगे. इनके में भी पीसीओएस हो सकता है. तो आजकल 8 साल की उम्र से पीरियड्स होना शुरू हो जाता है, तो उनके में भी पीसीओएस हो सकता है. तो उनको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स ये अनियमित हो रहा है, 6 महीने से 1 साल हो चुके हैं आपको अनियमित हुए, तो इसको आप साधारण नहीं मानिए. चाहे आपका पीरियड स्टार्ट हुआ हो, चाहे आपका महीना बंद होने वाला हो, या आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है. तो आपका सही डायग्नोसिस सही टाइम पे हो, तभी हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे और वो जल्दी ठीक हो सकता है आपका.
0: जी, तो ये जो नई शब्दावली आई है उसमें क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं?
1: अब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डिजीज जो है सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं है, इसमें एंडोक्राइन प्रॉब्लम भी हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो रहा है. तो पहले जो शब्द था पीसीओएस, ये सीमित था सिर्फ ओवरी तक.
0: जी.
1: तो इसकी जो ग्रेविटी है वो किसी को पता नहीं चल रही थी. सबको सिर्फ ये लगता था कि ठीक है, सिर्फ पीरियड्स इररेगुलर होंगे फिर ठीक हो जाएगा. अब पीएमओएस नाम से हमें पता चल रहा है कि ये बीमारी बड़ी है, ये सब चीज को इन्वॉल्व करती है. बस एक चीज और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है इस शब्द में अभी भी, वो है कि डिप्रेशन जो फीमेल्स को पीसीओएस या पीएमओएस होता है उनमें डिप्रेशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, लंबे समय तक रहता है. तो उनको लंबे समय से ये सारी प्रॉब्लम जूझनी पड़ रही है कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, एक्ने हो रहे हैं, हिर्सुटिज्म हो रहे हैं. तो आसपास के सभी लोग उनको पिक करते हैं, उनको स्कूल्स में कॉलेजेस में सब बोलते हैं कि मोटी हो रही है, कुछ करो. शी ऑल्सो नो, उसको भी पता है कि वो मोटी हो रही है. तो ये सबको उस पर पिक करेंगे तो ये अंदर ही अंदर वो डिप्रेस होती चली जाती है. तो ये एक और चीज अगर इसमें ऐड हो जाती तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है इस बीमारी के लिए.
0: बहुत अच्छी बात आपने कही. हमने देखा है अपने आसपास भी कि प्री मेनोपॉज अगर है या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो भी जो फीमेल है वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाती है, क्योंकि वो कटने लगती है, वो आना जाना छोड़ देती है समाज में, परिवार में. उसे लगता है कि किसी से बात ना हो, बस अपने कमरे में रहें. और मैंने तो ये भी देखा है कि लोग लाइट बंद करके अकेले कमरे में पड़े रहते हैं, तो एक तरह से ये डिप्रेशन की ओर ही जाता है.
1: बिल्कुल.
0: तो प्री मेनोपॉज या इस तरह की जो चीजें हैं उसमें और पीसीओएस में कंफ्यूजन थोड़ा सा महिलाओं को हो सकता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति भी है तो भी उन्हें ये सोचना चाहिए कि कहीं ये पीसीओएस तो नहीं
1: जी,
0: है.
1: बिल्कुल, ये हो सकता है. तो आपको उस समय एक बार डॉक्टर के पास मिलना ही है, क्योंकि अगर आपका महीना भी बंद होने वाला है तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है महीना बंद होने के बाद में. तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे सवाल करके वो चीज क्लियर कर लेंगे कि ये पीसीओएस है या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं आपके, और आपको उसके अकॉर्डिंग वो गाइड कर पाएंगे. अगर पेरीमेनोपॉजल है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या मेनोपॉज में आने वाली दिक्कतों को कैसे बचना है, और अगर पीसीओएस है तो हम वैसे ट्रीटमेंट दे पाएंगे आपको. तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उस चीज से शर्माइए नहीं, और घर में इधर उधर लोगों से पूछने या गूगल करने की बजाय एक बार आप डॉक्टर के पास चले जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए.
0: जी, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि आजकल हर समस्या का समाधान लोग गूगल में ढूंढते हैं, गूगल में तलाशते हैं कि वो समस्या कुछ है, वो दिख रहा है लक्षण, लेकिन वो कुछ और हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: इस पे ध्यान

0: नहीं देते हैं। तो जैसा कि आपने बात की अभी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या योग से, व्यायाम से और तनाव को कम करके इसमें काफी हद तक हमको फायदा हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका ये सारी चीजें जो आपने बोला वो हमारा स्ट्रेस फैक्टर रिड्यूस करेगा, तो अगर आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो रहा है तब भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है, बॉडी में आपका इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, तो ये सब चीजें भी आपको हेल्प करती है पीसीओएस हार्मोनल डिस्टर्बेंस से बचाने में। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना ही चाहिए।
0: और खाने की थाली में, यानी भोजन की थाली में बदलाव बहुत जरूरी
1: है। बिल्कुल, खाने की थाली हमारी संतुलित व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी दादी नानियां जो खाती थी उनके डाइट में सब कुछ होता था, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ होता था, तो हमें वैसे ही खाना खाना है। सब चीजों का संतुलित आहार लेना है हमें, और उतना ही हमें काम करना है
0: जी।
1: हमें तीन टाइम खाने की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम उतना काम नहीं करते हैं। हम अगर एक टाइम भी खाना खाएं दिन भर में तो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए वो काफी होता है, लेकिन वो बचपन से ऐसे दिमाग में डाला गया है कि तीन टाइम खाना होता है। एक्चुअली कई लोग छह टाइम भी खाते हैं तो वो छह टाइम खाने की आदत हो जाती है। पर अब पहले में देखा जाए, पहले के लोग सिर्फ दो टाइम खाना खाते थे और उससे कहीं ज्यादा, हमसे 90% ज्यादा वो काम करते थे, तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता था
0: जी। तो ये भी एक दुविधा वाला प्रश्न है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत जरूरी होता है
1: जी,
0: और बहुत सारे लोग उसको खाने की तरह ही खाते हैं, मतलब हैवी नाश्ता करते हैं।
1: नाश्ता जरूरी तो उसको हैवी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हैवी करेंगे तो आपका ग्लूकोज स्पाइक जाएगा, तो आपका शुगर बहुत बढ़ जाएगा। आधे घंटे तक ही आपको एनर्जी रहेगी, उसके बाद 11 बजे के आसपास आप ऐसा फील करेंगे कि दोपहर के 3 बज रहे हो और आप सो जाए, आपको बिस्तर मिल जाए सो जाए। तो आपको जो सुबह का नाश्ता है उसमें हाई फाइबर डाइट लेना है, ताकि आपकी एनर्जी पूरे डे तक मेंटेन रहे, एटलीस्ट आफ्टरनून तक वो एनर्जी मेंटेन रहे, क्योंकि मैक्सिमम लोग 90% लोग सुबह में ही मैक्सिमम काम करते हैं, तो हमें वो हाई पीक ऑफ एनर्जी उस समय चाहिए। तो नाश्ता इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही नाश्ता करना है हमें। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं मॉर्निंग में, प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड होने चाहिए हमारे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहिमा। हम जानना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं या तो इस परेशानी से गुजर रही हैं या जिनमें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए आप क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, जिनको भी पीसीओएस है, या फिर मैं यूं कहूं कि जिनको अनियमित पीरियड्स हैं और जिनको मोटापा हो रहा है या मुहासे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वो तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें। और सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि मैं अब अपना लाइफस्टाइल सुधारूंगी, क्योंकि आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे डॉक्टर भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम कहते हैं, अगर हम अपनी सहायता नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से ये भी है, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना है, तभी आपका जो भी बीमारी है वो ठीक हो पाएगा
0: जी। तो बहुत संक्षेप में एक बार फिर से आप ये बता दीजिए कि शरीर के किन संकेतों को अनदेखा नहीं करना है और हर महिला अपने हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आज से क्या छोटा सा बदलाव शुरू कर दे।
1: जी, सबसे पहले तो महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग डरने में या संकोच करने में ये सब चीजों से बाहर निकलिए। अब इस चीज से शर्माइए मत कि मेरे पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई क्या कहेगा, या आपको कोई और दिक्कतें हैं जो स्त्रियों को होती है, तो वो सब चीजों के लिए आप बात करना शुरू करिए।
0: तो डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में आई और पीसीओएस के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम।
2: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे पीसीओएस के कारण, लक्षण और उपचार, इस विषय पर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल अग्रवाल से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थी शुभ्रा ठाकुर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर के योग प्रशिक्षक श्री अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता।

0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जिलों में और अनेक स्थानों पर सामूहिक योग अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग क्यों जरूरी है या किस तरह से हम सबके लिए फायदेमंद है, इन सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं अनुभवी योग प्रशिक्षक अमित तिवारी। अमित तिवारी जी को योग प्रशिक्षण का करीब 26 वर्षों का अनुभव है। उनकी हठ योग और अष्टांग योग में विशेषज्ञता है। अमित जी नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: अमित जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, तो सबसे पहले तो एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए योग क्यों ज़रूरी है?
2: देखिए, योग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले तो हम समझें कि योग है क्या।
1: जी,
2: अब हम योग को जैसा हम समझते हैं कि आमतौर पे आज के टाइम पे देख के कि केवल सिर्फ जो आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं,
1: हाँ,
2: वो योग है।
1: मतलब जिसको फिजिकल हम जो
2: जिसको कहते हम फिजिकल हैं। समझते हैं।
1: जी जी।
2: जबकि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध।
1: जी,
2: यानी कि वो योग है जो कि आपके चित्त की वृत्ति को,
1: जी,
2: जो मन इधर उधर जो भटक रहा है, जो 10 जगह हमारा दिमाग जा रहा है, उसकी वृत्ति को जो रोक दे वही योग है।
1: जी,
2: तो जरूरी ये नहीं है कि आसन करेंगे तभी मतलब योग होगा। आप देखेंगे कि पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ 3 बार आसन का मेंशन किए हैं।
1: अच्छा।
2: और मैक्सिमम चीजें फोकस है ध्यान धारणा समाधि के ऊपर।
1: जी,
2: अब आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है,
1: जी,
2: वो है स्ट्रेस।
1: बिल्कुल।
2: और जहां मन ही अगर चित्त अगर नहीं अगर शांति, जैसे आप अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे फिट एंड फाइन बिल्कुल दिख रहे हैं,
1: जी,
2: लेकिन तनावग्रस्त हैं।
1: जी,
2: कोई हाइपरटेंशन से ग्रसित है, किसी को डायबिटीज है,
1: जी,
2: लेकिन बॉडी का अपीयरेंस बिल्कुल ठीक दिख रहा है।
1: जी,
2: तो योग आज के टाइम पे, ऐसे मॉडर्न टाइम पे योग खासकर मैं कहता हूं कि सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी, आपने अमित जी योग की शिक्षा जो प्रारंभिक है वो कहां से ली, इसके बारे में बताएं।
2: मैंने अपनी योग की शिक्षा स्टार्ट की जब मैं 7 साल का था।
1: जी,
2: और शिवानंदा आश्रम से स्टार्ट किया।
1: जी,
2: और उसके बाद में मुझे गुरुजी बीके सैयंगर से भी सीखने के लिए मुझे मौका मिला।
1: जी,
2: करीब 2.5 साल मैं उनके पास रहा।
1: जी,
2: पुणे रामामणि अय्यंगर इंस्टीट्यूट में।
1: जी,
2: फिर करीब 2 साल शरद गुरुजी के पास में रहा।
1: जी,
2: अष्टांग विन्यासा योगा सीखा।
1: जी,
2: तो लगभग करीब 13-14 साल करीब सीखने का मेरा एक्सपीरियंस रहा हठ योग और अष्टांग विन्यासा।
1: तो ये तो आपने 13-14 साल योग सीखा।
2: जी,
1: और अब योग सिखाते हुए आपको कितने साल हो गए हैं?
2: करीब 26 साल से ऊपर।
1: जी जी। तो ये मुझे बताइए, जैसे अभी आपने बात की कि आपने अष्टांग योग सीखा, हठ योग सीखा, कई लोगों को नहीं पता है, लोग योग से वही जैसा आपने कहा कि शारीरिक मुद्राएं या यूं कहें कि अभ्यास जो रहते हैं उसी को ही योग मान लेते हैं। तो योग कितने प्रकार का होता है, हठ योग और अष्टांग योग क्या है और इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में बताएं।
2: देखिए, योग अलग, जैसे क्लासिकल योगा है, राजयोग है, कर्म योग है, अष्टांग विन्यासा योगा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी रास्ते से आप चलेंगे
1: जी,
2: तो एट द एंड ऑफ द डे आप पहुंचेंगे सीड्स पे, जहां वहां से आपको चारों साइड से एक ही चंद्रमा दिखना है। पहाड़ पे किसी भी साइड से चढ़ें, चंद्रमा एक ही दिखना है।
1: बिल्कुल।
2: रास्ते अलग अलग हैं।
1: जी,
2: तो जैसे मैंने कहा कि योग का मतलब ही है कि योग चित्तवृत्ति निरोध।
1: जी,
2: अब वो चित्त की वृत्ति आप कैसे आसन के माध्यम से करें,
1: जी,
2: अष्टांग विन्यासा के माध्यम से करें, हठ योग के माध्यम से करें, कुछ भी हो सकता है। हठ योग में हम आसन और सांस के थ्रू बॉडी को स्टिलनेस में लेकर आते हैं और लंबे देर तक हम होल्ड करते हैं।
1: जी,
2: जिसमें कि सांस के ऊपर, होल्डिंग के ऊपर, आसन के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर फोकस किया गया है।
1: जी,
2: अष्टांग योग यानी हठ योग का ही सिक्के का दूसरा पहलू है, कह लीजिए।
1: अच्छा।
2: जिसमें कि यम नियम जो कि हठ योग में भी है।
1: जी,
2: लेकिन एक फ्लो में आता है और एक इंटेंसिव वे में आता है।
1: अच्छा।
2: तो आसन तो सारे वही हैं, लेकिन अष्टांग में एक के बाद एक फ्लो को मेंटेन करते हैं।
1: जी,
2: और थोड़ा इंटेंसिव होता है हठ योग के कंपेटिवली।
1: अच्छा।
2: तो इसमें सारे डायमेंशन के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे हठ योग में अगर कोई अगर कर रहा है तो किसी एक दिन किसी पर्टिकुलर एक

0: आसन पे फोकस किया, किसी और दिन पर्टिकुलर आसन के ऊपर फोकस किया
1: जी।
0: लेकिन अष्टांग आप थ्रू आउट ध्यान धारणा समाधि सभी के ऊपर एक उसी फ्लो में ही एग्जैक्टली गोल पे आते हैं
1: जी। अमित जी, जैसे कोई भी व्यक्ति अभी इस हमारी परिचर्चा को सुन रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति योग शुरू करना चाहता है तो एकदम प्रारंभिक अवस्था में आप उसे क्या सुझाव देंगे कि किस प्रकार का अभ्यास उसे करना चाहिए, कैसे वो योग किस दुनिया में पहला कदम रखे?
0: जो भी पहले स्टार्ट कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि वो पहले किसी शिक्षक के अंडर स्टार्ट करे
1: जी,
0: और बिल्कुल बेसिक आसन प्राणायाम और ध्यान के ऊपर फोकस करे
1: जी,
0: बजाय कि इंटेंसिव आसन के ऊपर ध्यान देने से। कि जैसे हम आज के दौर पे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में हम देखते हैं
1: जी,
0: और बहुत ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं उससे, और एडवांस आसन करने के लिए हम सोचते हैं कि अरे बाप रे ये तो इतना मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं
1: जी।
0: तो वो ना तो करने की इतनी ज़रूरत है, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: लेकिन जो हम कर रहे हैं उसमें स्टिलनेस कितना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम किसी प्रशिक्षक के अंदर शिक्षक के अंदर बेसिक आसन से स्टार्ट करें
1: और उसमें एक निरंतरता भी रहे,
0: निरंतरता आए
1: जी।
0: जब वो निरंतरता रहेगा तो एक दिन वो जो एडवांस आसन हम जो देखते हैं वो भी आने लग जाएगा। कई लोगों को लगता है कि एडवांस आसन के लिए कुछ अलग से स्पेशल करना होता है, जो कि कुछ भी नहीं, वही बेसिक आसन ही जैसे जैसे आप उसमें डीप जाना चालू करते हैं वैसे वैसे वो एडवांस हो जाता है।
1: बिल्कुल अमित जी, अभी आपने एक बात कही थी कि आज की जो है वो दिनचर्या लोगों की कुछ ऐसी है, जॉब भी ऐसे हैं कि एक स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, और ज़्यादातर लोगों का डेस्क जॉब रहता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में भी कोई है वो कुर्सी पे बैठे बैठे ही उसका लैपटॉप के सामने ही एक बड़ा वक्त दिन का गुजर जाता है। तो ऐसे में लोग क्या होता है, डायबिटीज़ के, मोटापा के, हाइपरटेंशन के अपने आप ही शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में योग किस तरह से सहायता कर सकता है?
0: ऐसी स्थिति में योग बहुत सहायक है
1: जी।
0: मैं कहता हूँ कि 20 मिनट आज की डेट में चाहे या किसी कोई भी बिजी से बिजी आदमी भी है
1: जी,
0: वो 20 मिनट अपने लिए जरूर निकाल सकता है
1: जी।
0: उस 20 मिनट में कम से कम वो सूर्य नमस्कार
1: जी
0: और बेसिक प्राणायाम कर ले, जैसे कि अनुलोम विलोम कर ले, कपालभाति थोड़ा कर ले, भ्रामरी कर ले
1: जी,
0: ये 20 मिनट भी उसके लिए काफी है
1: जी।
0: बस ये कंटिन्यूसली एक निरंतरता मेंटेन रहे
1: जी,
0: और ये नोटिस करेंगे लोग कि उनके अंदर फिजिकली मेंटली इतना ड्रेस्टिकली इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जा रहा है।
1: एक बात और है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो योग को मतलब कई लोग तो उसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है कि बड़ी लंबी सी प्रक्रिया है, कुछ बोरिंग सी है, तो जिम को इस तरह की जो फिटनेस के लिए उसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे?
0: देखिए, मैं योग और जिम दोनों को पैरेलल मानता हूँ, समांतर मानता हूँ
1: जी,
0: और मैं जिम के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, जिम की भी उतनी ही ज़रूरत है
1: जी,
0: मसल का स्ट्रेंथ भी होना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन 20 मिनट का अगर बेसिक अगर स्ट्रेचिंग और केवल अगर प्राणायाम करें
1: जी,
0: तो ये एक और एड ऑन होगा उनके फिटनेस में, ओवरऑल मेंटल हेल्थ में
1: जी।
0: क्योंकि फिजिकली तो आप जिम में कर ही रहे हैं
1: जी,
0: आपने किसी चीज को स्ट्रेंथन किया लेकिन आपने कड़ा कर दिया
1: जी।
0: अब वो जब कड़ापन है और जब अगर कभी ऑल ऑफ ए सडन कुछ मूवमेंट आया तो वो लचीलापन नहीं होगा और इंजरी के चांसेस होंगे
1: जी।
0: जैसे बांस को अगर हम ऊपर से कहीं से गिरा दें तो बांस फट सकता है,
1: बिल्कुल
0: घास नहीं फटेगा
1: जी।
0: लेकिन घास अगर बहुत ज्यादा लचीला है तो घास खड़ा भी नहीं हो सकता है
1: जी।
0: तो दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है
1: जी।
0: तो मैं आज के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि वो जिम करें लेकिन 20 मिनट जो कि मैनेजेबल है
1: जी, बिल्कुल
0: 20 मिनट योग जरूर करें, कम से कम कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जरूर करें
1: जी। एक सवाल और है कि आज की दुनिया में मोबाइल जो है वो यूं कहें कि अब हमारा एक जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, उससे कोई भी अछूता नहीं है, वो क्या बच्चे क्या युवा और क्या बुजुर्ग सब ही मोबाइल चलाते हैं, एक तरह से लत हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि एकाग्रता की कमी होती जा रही है लोगों में, नींद ना आने की एक समस्या हो गई है, इसमें योग किस तरह से मदद कर सकता है?
0: इसमें प्राणायाम बहुत मदद कर सकता है
1: जी,
0: और मात्र एक सप्ताह में बदलाव दिखने लगेगा।
1: अच्छा,
0: कि कुछ अगर नहीं तो सिंपल सिर्फ एक अनुलोम विलोम करें
1: जी,
0: सुबह हार्डली 5 मिनट
1: जी
0: और शाम को केवल 5 मिनट।
1: अच्छा,
0: सोने के पहले कर लें, इससे खाने पीने से या खाने के पहले करना है, खाने के बाद करना है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं
1: जी।
0: तो करना क्या है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे से
1: जी
0: नासिका छिद्र को
1: जी
0: दबा के और बाईं साइड से लेना है
1: जी।

0: और फिर बाईं साइड को दबा के और दाईं साइड से छोड़ देना है
1: जी।
0: ये प्रक्रिया 5 मिनट दोनों साइड से ऐसे ही दोहराना है।
1: ओके।
0: सो एक बार दाएं से लिए, फिर बाएं से छोड़े, फिर बाएं से लिए और दाएं से छोड़े,
1: दाएं से छोड़े जी।
0: इस पूरे प्रक्रिया में केवल सिर्फ 5 मिनट
1: जी
0: जो हम कर रहे हैं आंख बंद करके, और सिर्फ केवल सांस पे ध्यान देना है कि ठीक है सांस किस किस हिस्से को, नासिका के भीतर किस किस हिस्से को छू रहा है
1: जी।
0: केवल ये 5 मिनट ये अभ्यास
1: जी
0: ड्रेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है
1: जी।
0: मैं सभी युवा वर्ग को कहता हूँ कि दूसरा भ्रामरी का अभ्यास जरूर करें
1: जी।
0: आप भ्रामरी सोने के पहले कर सकते हैं
1: जी।
0: कोविड के टाइम पे देखा गया कि कोविड के टाइम पे भ्रामरी के बहुत अच्छे रिजल्ट आए
1: जी।
0: ओवरऑल भ्रामरी मेंटल हेल्थ में बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है
1: जी।
0: एकाग्रता को बढ़ाता है
1: जी।
0: प्राणायाम अगर केवल सिर्फ 5 मिनट सुबह और शाम भी अगर करें तो ये मोर देन सफिशियंट है।
1: अमित जी, आपकी जो विशेषज्ञता है वो हठ योग और अष्टांग योग में तो है, जो कस्टमाइज एक हीलिंग सीक्वेंसेस होते हैं उसमें भी आपकी काफ़ी विशेषज्ञता, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: देखिए, आमतौर पे हम जो हीलिंग प्रोसेस है
1: जी,
0: बेसिकली क्या है कि नॉर्मली हम जो योगा करते हैं, हम जो भी आसन है
1: जी,
0: हम आसन को त्रिकोण आसन जैसे अगर हम कर रहे हैं तो त्रिकोण आसन को हम गलत अलाइनमेंट से हम करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इस वजह से जैसे किसी के बैक में पेन आ गया, किसी के इनर थाई में पेन आ गया
1: जी।
0: अब इसी को हम सही अलाइनमेंट के साथ में करते हैं तो वही थेरेपेटिक योगा हो जाता है।
1: अच्छा।
0: कि उसके थेरेपेटिक ओवरऑल आपको जो 100% आपको जो बेनिफिट जो मिलना है
1: जी,
0: वो मिलने लग जाता है।
1: मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बीमारी से या किसी परेशानी से शारीरिक ग्रसित है
0: जी,
1: तो उसके लिए फिर आप एक कस्टमाइज उसको बताते हैं कि ये आसन करने से उसे फायदा होगा।
0: आमतौर पर वैसे तो मैं किसी को भी मैं कहता हूँ कि सही अलाइनमेंट के साथ में ही करने के लिए।
1: अच्छा।
0: नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मैं पार्क वगैरह में लोगों को देखता हूँ कि बस किसी हिसाब से बस हमें, क्योंकि हमारा फोकस हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं
1: जी,
0: तो उस कंपटीशन के प्रभाव में
1: जी
0: हम किसी भी हिसाब से करने के लिए सोचते हैं
1: जी,
0: सही अलाइनमेंट को हम भूल जाते हैं
1: जी।
0: तो उसमें जो करना है और उसका जो प्रभाव आना है, जो इफेक्ट आना है, वो इफेक्ट ना आके हम रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से पेन या कुछ गड़बड़ कर लेते हैं
1: जी।
0: अब जो थेरेपेटिक योगा है
1: जी,
0: वो कहता है कि जो जो कि बीके सयंगर गुरुजी ने इसके ऊपर फोकस काफी किया
1: जी,
0: और गुरुजी ने कहा कि भाई सभी आसन का
1: जी
0: सही अलाइनमेंट होना चाहिए
1: जी।
0: मैं शीर्षासन करूं ये किस लिए जरूरी है
1: जी,
0: लेकिन शीर्षासन अगर करूं, जो अगर शीर्षासन अगर नहीं अगर कर सकता है तो वो सपोर्ट के साथ कर सकता है, प्रॉप्स के साथ में कर सकता है, लेकिन अलाइनमेंट तो सही हो
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आफ्टरऑल अलाइनमेंट अगर ठीक है तो वो बेनिफिट तो आपको 100% मिलना ही है,
1: तो इससे गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं।
0: देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा दावा नहीं करता हूं
1: जी,
0: मॉडर्न पद्धति जो है और आयुर्वेदिक जो लाइफस्टाइल है
1: जी,
0: उसके साथ में योग आपको एक असिस्ट करता है।
1: अच्छा।
0: जैसे किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है
1: जी,
0: तो केवल ये नहीं है कि हम अपना आहार कुछ भी रखें और चूंकि योग कर रहे हैं तो वो सब पचा लेगा।
1: हाँ, लेकिन आहार में भी सुधार करना हाँ, ही पड़ेगा।
0: तो आहार में भी सुधार करना है
1: जी,
0: और अपने दैनिक दिनचर्या में भी सुधार करना है।
1: ये बताएं अमित जी कि जैसे हमारे यदि कोई श्रोता इस समय जो इसको सुन रहे हैं, हमारी इस बातचीत को, इस कार्यक्रम को, तो उन्हें यदि आपको योग का कोई सबसे सरल अभ्यास बताना हो तो वो कौन सा होगा?
0: मैं सबसे सरल अभ्यास कहूंगा कि अनुलोम विलोम और भ्रामरी,
1: जो आपने एकाग्रता के लिए हमें बताया। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है
0: जी,
1: आपने करीब 13-14 साल योग सीखा और अब करीब 25-26 साल आपको होगा योग सिखाते हुए
0: जी,
1: तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर?
0: मैं सभी को कहना चाहूँगा कि केवल सिर्फ योगा दिवस के लिए नहीं होना चाहिए
1: जी,
0: ये आपके दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि एक दिन योगा करके योगा दिवस में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है
1: जी,
0: आपको इसको दैनिक दिनचर्या का, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा
1: जी,
0: और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पूरे ओवरऑल लाइफ में ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है
1: जी,
0: एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है
1: जी।
0: तो मैं सभी को इस योग दिवस पे कहूंगा कि योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं
1: जी, बिल्कुल। और जब भी करें तो जो आपने जैसा कहा कि एक अनुभवी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करें
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने वाकई बहुत सारगर्भित तरीके से हमारे श्रोताओं को योग के बारे में बताया, उसके महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में। आपको भी योग दिवस की बहुत सारी बधाई।
0: धन्यवाद आप सभी को।

0: और आपका हार्दिक आभार।
1: जी धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: बातों बातों में समसामयिक विषयों पर केंद्रित इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर के योग प्रशिक्षक श्री अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति थी विकल्प रंजन।

0: आज आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर के योग प्रशिक्षक श्री अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति थी विकल्प रंजन शुक्ला की। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: अभी हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारण किया जा रहा था, ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। हवा की महक में महकता कार्यक्रम गुंजन।

सूरज की किरणें कह रही हैं कि आज का ये दिन आपका अपना है। जी हाँ दोस्तों, सूरज की इसी पहली प्यारी और सुनहरी किरण के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है आकाशवाणी अंबिकापुर पर, जहां जानकारियों का खूबसूरत सिलसिला है, बातों का प्यारा सा कारवां है और संगीत की मीठी सी सौगात है। आज 20 जून है, शनिवार का यह हसीन दिन एक नई उमंग बेहद खुशगवार सुबह के साथ अपनी खिड़की खोल चुका है। इस ताजा मखमली सुबह में आप सभी के साथ है ये आपका रेडियो दोस्त तरुण। नमस्कार, जय जोहार। दिल की गहराइयों से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सच कहूँ तो जब ये शनिवार की सुबह आती है ना, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही सुकून, नया उत्साह, नई ऊर्जा, ढेर सारी नई उम्मीदें लेकर जब ये सुबह आती है तो हमारा पूरा अंबिकापुर भी धीरे धीरे खिल उठता है। पल पल बदलता ये समय कह रहा है खुद से थोड़ी बातें करने का, प्रकृति को करीब से महसूस करने का। इस समय शहर में आपके आसपास तरह तरह की हलचलें शुरू हो चुकी हैं। कोई अपने ऑफिस जाने की तैयारी में जुटा है, तो किसी की रसोई से गर्मा गर्म नाश्ते की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। और इस सुहाने मौसम में हमारे किसान भाई भी पूरे जोश के साथ खेतों में जुट गए हैं। जैसे ही बारिश का ये मौसम आता है, खेतों की गतिविधियां और रफ्तार तेजी से बढ़ जाती हैं। धरती माँ को सजाने का काम शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई सुबह सुबह योगासन की सुंदर मुद्राएं बना रहा है अपनी सेहत को सुधारने के लिए। वैसे दोस्तों, कल ही यानी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। पूरा संसार कल योग के रंग में रंगेगा, लेकिन अपनी सेहत के लिए इस योग और एक्सरसाइज को हम सिर्फ एक दिन के दायरे में क्यों बांधें? ये तो हमारी हर दिन की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब सुबह की शुरुआत सेहत और कसरत से होती है तो पूरा दिन अपने आप सुंदर और लाजवाब हो जाता है। तो बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, क्योंकि आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुंजन में हम ऐसी ही ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए, आपके कामों में थोड़ा सा सहयोग तो हम कर ही सकते हैं। कैसे? एक गीत सुनवाकर। और जब जब गीतों की सरलहरियां गूंजती हैं, हमारा मन खुशी से परिपूर्ण हो जाता है। एक जादू सा छा जाता है कुछ इस गीत की तरह।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

गाने के इस खूबसूरत सिलसिले के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुंजन में। दोस्तों, आज शनिवार की सुहानी सुबह में जहां हम अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की बात कर रहे हैं, वहीं आज के दौर की एक ऐसी सच्चाई पर बात करना बहुत ज़रूरी है जो सीधे हमारी रोज़मर्रा की

जिंदगी से जुड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस छोटी सी गैजेट की, यानी हमारे मोबाइल फोन की। मोबाइल आज हमारी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक ये हमारे साथ रहता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सुविधा के लिए बना ये ही मोबाइल अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हाल ही में हुए एक बड़े दिलचस्प और चौंकाने वाले सर्वेक्षण में 18 से 45 वर्ष के लगभग 5,400 लोगों पर एक स्टडी की गई, और जानते हैं क्या सामने आया? इसमें यह पता चला कि लंबे समय तक बिस्तर पर लेटकर या गर्दन झुकाकर मोबाइल चलाने से एक नई बीमारी, जिसे विशेषज्ञ टेक नेक सिंड्रोम कह रहे हैं, उसकी समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी में भी गर्दन के दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, लगातार सिर दर्द, रीढ़ की हड्डी पर एक्स्ट्रा फ्रेशनर जैसी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हेल्प एक्सपर्ट का कहना है कि जब हम लगातार गर्दन झुकाकर नीचे मोबाइल देखते हैं तो हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर सामान्य से कई गुना अधिक भार पड़ता है, जिससे कम उम्र में ही बुजुर्गों जैसी तकलीफें महसूस होने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तकनीक का आनंद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर बिल्कुल नहीं। इसलिए आज आपको एक छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, जिन्हें गांठ बांध लीजिए। पहली बात, बिस्तर पर लेटकर या अजीब तरीके से झुककर मोबाइल चलाने से पूरी तरह बचिए। दूसरी बात, मोबाइल को हमेशा अपनी आंखों के लेवल तक थोड़ा ऊपर उठाकर उपयोग कीजिए, ताकि गर्दन पर जोर न पड़े। तीसरी बात, अगर लंबा काम है तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपनी गर्दन और कंधों को आराम दीजिए। और चौथी बात, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था, अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ समय योग और हल्के एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालिए। हमेशा याद रखिए दोस्तों, सुविधा के लिए बना मोबाइल यदि सावधानी से न इस्तेमाल किया जाए तो वह बड़ी असुविधा का कारण भी बन सकता है। तो बस, डिजिटल दुनिया से जुड़े रहिए, लेकिन अपनी गर्दन, अपनी रीढ़ और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। और आपके मनोरंजन के लिए तो हम हैं ही। जब हम समय समय पर आपके लिए गीत लेकर आते हैं, संगीत लेकर आते हैं, तो आप भी कह होते हैं कि आज बात कुछ अच्छी ज़रूर है। और ये चीज़ें आकाशवाणी अंबिकापुर पर हर रोज़ होती हैं।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, आज शनिवार की सुबह एक बहुत ही प्यारी सी सच्ची बात दिल में आई जो मैं आप सब से बांटना चाहता हूँ। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, सच्चा और समझदार राही वो नहीं जो सिर्फ तेजी से दौड़ना जानता है, बल्कि सच्चा राही वो है जो मंजिल तक सुरक्षित पहुँचना और अपनों को गले लगाना जानता है। जी हाँ, क्योंकि ये जो हमारी जिंदगी का सफ़र है ना, ये बहुत रेस और मुकाबले से जुड़ा हुआ है। किसी को किसी का इंतजार रहता है घर पर। हमारी इस जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जानते हैं क्या है? वो है हमारा परिवार, हमारे वो अपने जो हर शाम मुस्कुराते हुए घर के दरवाजे पर हमारा इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम इसी खूबसूरत जिंदगी के सफर में थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो दिल को बड़ा दुख होता है। आज सुबह सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण पर मेरी नज़र पड़ी। विश्लेषण कहता है कि हमारे भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और सच तो यह है कि हर दिन सड़क हादसों में लगभग 500 जिंदगियां खाक हो रही हैं, 500 परिवार बेघर हो रहे हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को बदला जा सकता है और इसे बदलने की ताकत किसी और के पास नहीं बल्कि हम सबके पास है। विशेषज्ञों ने बहुत ही सही बात कही है, इन दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए सबको वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। अक्सर चंद सेकेंड की जल्दबाजी या एक छोटा सा गलत ओवरटेक

पूरे परिवार की खुशियों को छीन लेता है। थोड़े से वक्त को बचाने के चक्कर में अपनी अनमोल जिंदगी को कई लोग दांव पर लगा देते हैं। इसलिए आज आपका ये दोस्त आकाशवाणी अंबिकापुर के इस मंच से आप सबसे पूरे जोश के साथ ये वादा चाहता है कि हम जब भी सड़कों पर निकलें तो पूरी सावधानी के साथ यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं। गाड़ी की रफ्तार को हमेशा अपने काबू में रखें, क्योंकि मंजिल पर 2 मिनट देरी से पहुंचना कभी ना पहुंचने से लाख गुना बेहतर होता है। और वाहन चलाते समय पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सड़क पर रखेंगे। याद रखिए दोस्तों, आपकी सुरक्षा में ही आपके पूरे परिवार की मुस्कान छिपी हुई है। तो चलिए आज इस सुहानी सुबह में हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, सावधानी से वाहन चलाएंगे और अपनी जिंदगी को सुरक्षित और सुंदर बनाएंगे। जब भी आप गाड़ी चलाएं, दोपहिया वाहन पर हेलमेट जरूर पहने और 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इसके अलावा यातायात नियमों का पालन जरूर करें।

और जब जब हम एक जागरूक नागरिक की तरह गाड़ी चलाते हैं, यातायात नियमों का पालन करते हुए चलाते हैं, तो हमारा परिवार हमसे बहुत खुश होता है।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

आज सुबह जब नींद खुली तो मौसम ने सचमुच दिल जीत लिया। अंबिकापुर के आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में मछलियां अपनी मस्ती में तैरती हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और तभी आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की बौछारों ने मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया। बारिश की गिरती बूंदों की टप टप, मिट्टी से उठती भीनी भीनी खुशबू और पेड़ पौधों पर बिखरी ताजगी ने मानो प्रकृति को खूबसूरती में चार चांद लगा दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे धरती और आसमान मिलकर एक सुंदर गीत गुनगुना रहे हों। इसी सुहानी सुबह में मॉर्निंग वॉक का आनंद भी कुछ अलग ही होता है। ताजी हवा का हर झोंका मन को सुकून देता है और नई ऊर्जा से भर देता है। तो अगर आपने आज की इस शानदार मौसम का आनंद नहीं लिया है तो थोड़ा समय निकालिए, प्रकृति के बीच जाइए और बारिश की बाद की इस मनमोहक खूबसूरती को महसूस कीजिए, क्योंकि ऐसी सुबह रोज रोज नहीं आती और इसका आनंद लेना भी जिंदगी का एक छोटा सा बहुत ही सुंदर रूप है। तो चलिए हम भी अपने स्टूडियो में बारिश को गिराते हैं, कैसे, इस गीत में। बादलों की गड़गड़ाहट, टिप टिप बरता पानी सचमुच आनंद में बढ़ोतरी कर देता है।

दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर और मौसम भी आज कुछ खास अंदाज में आपका स्वागत कर रहा है। ठंडी हवाएं, सुहाना वातावरण और प्रकृति की खूबसूरती मन को आनंद से भर रही है। लेकिन इस खूबसूरत मौसम में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है और वो है हमारी मुस्कुराहट, क्योंकि असली सुंदरता चेहरे की नहीं, चेहरे पर सजी मुस्कान की होती है। और यह मुस्कान तब खिलती है जब हम स्वस्थ, ऊर्जावान और सेहत से भरपूर होते हैं। अपनी इस अनमोल मुस्कुराहट को बनाए रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है योग। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत और सकारात्मक बनाता है। जब तन स्वस्थ होता है और मन प्रसन्न होता है तो चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ ही जाती है। तो आइए अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट योग से करें। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, अपनी मुस्कान को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से ही

आपका चेहरा खूबसूरत लगता है और आपकी इस मुस्कुराहट से आपके आसपास का माहौल भी खुशियों से भर जाता है।

और मैं तो जब भी मौका मिलता है ना मुस्कुरा ही देता हूँ। और मौसम भी कुछ ऐसा ही है, मुस्कुराने वाला। बारिश का ये मौसम आ चुका है, मुस्कुराइए, प्रकृति के साथ खो जाइए।

मीडीवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। इस योजना के तहत पहली बार

रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रूपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 3,000 रूपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। रायपुर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति वित्तीय प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि देशभर में योजना के तहत करीब 2,400 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 11,400 से अधिक युवाओं को पहली नौकरी का प्रोत्साहन मिला है। ईपीएफओ रायपुर के इस कार्यक्रम में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमेश डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम डोंडराही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने घोषणा की कि ये स्थल अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 37 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। कल प्रदेश के अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग सहित विभिन्न शहरों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आइए श्रोताओं, आपको मौसम संबंधी सूचना दे दें। स्थानीय मौसम कार्यालय की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान रहा 33.0 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 24.0 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान वर्षा मापी गई 7.4 मिलीमीटर। आइए अब आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज की दूसरी और तीसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

आज रात्रि 9:30 पर सुनेंगे अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। रात्रि 10 बजे सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन ठुमरी और दादरा। कलाकार होंगे विवेक करमाहे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत कार्यक्रम सफरंग। दिन में 12:30 पर आपको सुनवाएंगे कव्वालियां। दिन में 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। जानकारी का विषय होगा गन्ने की खेती से लाभ। दिन में 1:10 पर शहरी महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन। बातचीत होगी विश्व शरणार्थी दिवस, शिक्षा से महिलाओं से में आत्मनिर्भरता। साथ ही सुनेंगे शक्ति अभिव्यक्ति क्रम, व्यंजन विधियां, गीत संगीत। दिन में 1:40 पर श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम होगा ईमेल की गूंज। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गीत कंधा कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर आप सुनेगा भजन संध्या कार्यक्रम। इसमें आपको सुनवाते हैं हम गैर फिल्मी और फिल्मी भजन। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे युवा सोच और एक ही फिल्म से क्रम। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम कोतली। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम माधुरी। शाम 7:05 पर सुगम संगीत कार्यक्रम का रजनीगंधा। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और भविष्य का भारत। इसमें शाम 7:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आजकल में आप सुनेंगे बकरी पालन से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। साथ ही आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम कर जानकारी और आज कर सवाल। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। यतुति श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मिडवेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए। लीजिए सुनिए नए तराने कार्यक्रम।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का अपने नए तराने कार्यक्रम में, और इस बेहद खूबसूरत हसीन और ताजगी से भरी सुबह में नए गानों की महफिल को सजाने के लिए आपके साथ जुड़ चुका है आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। आप सभी को मेरा नमस्कार। शनिवार की ये सुबह होती है ना, ये अपने आप में ही बड़ी सुंदर लगने लगती है। जब मौसम इतना सुहाना हो, आसमान में बादलों की अटखेलियां चल रही हो, तो दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है। क्या नए तराने।

आवाजें हैं जयेश गांधी, हिमेश रेशमिया, सोनू निगम, सुनिधि चौहान और साथियों की। गीत समीर ने लिखा है, संगीत है हिमेश रेशमिया का, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
3: बेबी को बेस पसंद है।
4: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए

0: फरमाइश फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
0: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
2: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
0: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
2: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 0777423006000। नंबर एक बार फिर 0777423006000।
3: किसी ने क्या सुंदर बात कही, बीते हुए कल के दुखों को भुलाकर, आने वाली कल की चिंताओं को छोड़कर, आज की सुबह को नया तराना बना दो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिंदगी का असली मजा इस आज को खुलकर जीने में है। आज हमारा संदेश भी यही है कि अक्सर हम अपनी जिंदगी में पुरानी बातों को सोचकर उदास रहते हैं या आने वाले कल की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आज की इस हसीन पल को, इस खूबसूरत सुबह को जीना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज ये जो आज का दिन है ना, यह ऊपर वाला का दिया हुआ एक कोरा कागज है। इस पर बीते हुए कल की मायूसी मत लिखिए, बल्कि इस पर अपने हौसले से, अपनी मेहनत से और अपने अटूट विश्वास से सफलता का एक नया गीत लिख दीजिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपके दिल में जोश है और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो चलिए दोस्तों, आज नए तराने की इस मंच से हम सब मिलकर वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी के हर पल को पूरे जोश के साथ जिएंगे, खुद भी मुस्कुराएंगे और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी खुशियां बिखेरेंगे। क्योंकि जो आज का ये पल है ना, वो कभी लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए खुलकर मुस्कुरा लीजिए। और मुस्कुराने की वजह हम भी आपको देते हैं, कैसे, गीत सुनवाकर।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर मिडी वीप और एफएम बैंड पर। जिंदगी एक नया सुर दीजिए, चेहरे पर मुस्कान सजाइए और नए तराने के साथ इस शनिवार को यादगार बना दीजिए। सुनते हैं धुरंधर फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं खान साहब और शाश्वत सचदेव की।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं नए तराने कार्यक्रम। दोस्तों, हम अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, काम के किसी भी दबाव में हों, लेकिन अपने अंदर के उस बचपन को, उस जिंदा दिली को कभी बूढ़ा मत होने दीजिए। जिंदगी में समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा नासमझ बन जाना, बिना किसी वजह के खिलखिलाकर मुस्कुरा देना और रेडियो पर बजते किसी नए गाने की बीट पर अचानक अपनी उंगलियों को थिरका देना, यही तो वो पल हैं जो हमें असल मायने में जीना सिखाते हैं। दुनिया की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, आप अपने दिल के रेडियो का स्टेशन हमेशा उम्मीद और खुशी पर सेट करके रखिए। जब आपका भीतर का मन खुश रहेगा तो बाहर की हर मुश्किल परिस्थिति आपको एक नए गाने की तरह खूबसूरत लगने लगेगी। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह में अपनी व्यस्तताओं से कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल सजाइए और इस पल को खुलखुलाकर जी लीजिए। खुद भी मुस्कुराइए और अपने आसपास के माहौल को भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से महका दीजिए, क्योंकि ये पल उन्हीं का होता है जो मुस्कुराना जानते हैं और अपनी खुशी को दूसरों से बांटना जानते हैं।

और मुस्कुराहट के लिए हम ऐसे ही गीत लेकर आते हैं। फिल्म का नाम है थैंक गॉड। आवाजें हैं युहानी, जुबीन नौटियाल, सूर्या रघुनाथन की।

दोस्तों, दुनिया में अपना घर सबसे सुरक्षित और सबसे प्यारी जगह माना जाता है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर किसी व्यक्ति को युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना घर, अपना शहर, अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े तो उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं। ऐसे ही लाखों लोगों का साहस, धैर्य, संघर्ष को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और हौसले को सलाम करने का अवसर है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें मानवता, करुणा और सहयोग का संदेश देता है तथा यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा, बेहतर जीवन का अधिकार है। आइए इस अवसर पर हम उन लोगों के साहस को नमन करें जो कठिन चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और प्रयास तभी सफल होता है जब हम कोशिश करते हैं। सकारात्मक रूप से की गई कोई भी कोशिश जरूर सफल होती है। और एक कोशिश तो हम भी करते हैं, आप तक गीत

अभी आप सुन रहे थे तुलसी कुमार की आवाज में ये गीत। सुरों की इस पावन और मधुर सरिता में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं नए तराने कार्यक्रम। किसी विद्वान ने कितनी गहरी बात कही है, घड़ी की टिक टिक सिर्फ समय को नहीं बताती, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि ऊपर वाले ने हमें मुस्कुराने और कुछ अच्छा करने और खूबसूरत पल का उपहार दिया है। सचमुच ये समय ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी और सबसे सुंदर सौगात है। अक्सर हम आने वाले

दिनों की बड़ी बड़ी योजनाओं में इतने खो जाते हैं कि छोटा सा प्यारा सा पल इस समय हमारे पास है उसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं। यदि घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी मासूम शरारत में शामिल होकर देखिए। यदि घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो दो पल उनके पास बैठकर उनकी जीवन यात्रा की अनुभवों को सुनिए। जब हम इस तरह अपनों के लिए समय निकालते हैं ना, तो घर का हर कोना खुशियों से महक उठता है और हमारी जिंदगी खुद ब खुद मधुर संगीत बन जाती है। तो चलिए, संगीत की बात जब चली है तो चलिए झूमता हुआ संगीत सुनते हैं। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और साथियों की, संगीत प्रीतम का, गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ

0: 7474 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: मैं श्रोताओं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपसे बातें करता हूं ना, तो मेरा समय ऐसे बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। हमारी जिंदगी में भी जो कुछ अच्छा है, उसके लिए ऊपर वाले को और हमारे साथ जुड़े प्यारे लोगों को धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है। अक्सर हम उन चीजों के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में सोचना भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमें बिना मांगे दी हैं। यह खूबसूरत सुबह, यह सेहतमंद शरीर, अपनों का प्यार और रेडियो पर गूंजते ये मीठे सुर, ये सब उसकी अनमोल नियामतें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? जो चीज नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं, और जो है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। तो आज इस पल से आप सबको धन्यवाद दीजिए, जैसा कि मैंने आपको दिया।

0: राम राम हो किशन भैया।
1: राम राम बिनु भैया।
0: ए दे भाई नगद ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत

0: ला जोतत रहे
1: हाँ,
0: है नहीं
1: हाँ,
0: बेरा हर ज्यादा लगे
1: हाँ,
0: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने
1: कौन कार्यक्रम ला
0: ये दे किसान वाणी
1: हाँ
0: तेकर में ये दे जानकारी भेटाइस नहीं
1: हाँ
0: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी अब ये दे विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में
1: हाँ
0: आए
1: हाँ
0: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज हर नहीं बढ़ी नहीं
1: हाँ
0: ताहा तो
1: राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच
0: हो
1: और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्स में भी एला ये दे सुन सकते हैं।
0: हाँ अभी तो शुरू होगी सहे
1: तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान वाणी।
1: वाणी।

दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गीत, आवाज़ें विशाल दादलानी और साथियों की थी। दोस्तों, पैसों से खरीदी गई महंगी चीज़ें शायद किसी को पल भर की खुशी दें, लेकिन दिल से कहे गए तारीफ के दो मीठे बोल किसी टूटते हुए हौसले को जिंदगी भर की असीम ऊर्जा और ताकत दे जाते हैं। इसलिए दूसरों को प्रोत्साहित करना, उसकी सराहना करना जरूरी है। अक्सर हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दूसरों की कमियां और गलतियां तो बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों को देखकर मुस्कुराना या उनकी तारीफ करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप घर पर हों या अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलें, तो अपनों को और अपने आसपास काम करने वालों को थोड़ा प्रोत्साहन ज़रूर दीजिए। अगर घर में हैं तो अपनी माँ या भाभी को सुबह के नाश्ते के लिए धन्यवाद ज़रूर कहिए और ये कहिए कि आज तो वाह मज़ा आ गया। दफ्तर में अगर हैं, आपके किसी साथी ने कोई छोटा सा भी काम किया है तो उसकी पीठ ज़रूर थपथपाइए और कहिए, भाई आज तुमने कमाल कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों, आपके मुंह से निकले दो मीठे शब्द किसी का पूरा दिन बना सकते हैं, उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर सकते हैं। और जब हमारे शब्दों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है ना, तो वो ईश्वरीय आशीर्वाद बनकर हमारे पास लौटती है। तो आज जरूर किसी की तारीफ कीजिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में हाउसफुल 4 का ये गीत, मीका सिंह और साथियों की आवाजों में।

0: महेश भट्ट।
1: इस गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सुबह के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
3: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का

0: उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृह मंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 11:05 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का आगाज करेंगे लकी अली और राम्या की आवाज़ में कहो ना प्यार है फिल्म के इस गीत के साथ। लिखा है इब्राहिम अश्क ने, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का। सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा। धरसीवा छत्तीसगढ़ से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, इकबाल कुरैशी, बलदाऊ राजेश्वरी, आस्था यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हमारे श्रोता साथी हैं छन्नू लाल यादव, पुष्पलता यादव, खुशी, प्रवीण कुमार साहू, अर्पिता, अभिनव यादव, CL यादव। इंदिरानगर रायगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा। तो आइए, आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश आई है औरंगाबाद से, राजेश राबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी। जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ग्राम भुरसुदा से भगवानी, संतोष, ज्योति, गजेंद्र, चंद्रप्रकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इन सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म अमर अकबर एंथोनी का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: आप सुन रहे हैं आपके ही फरमाइशी पत्रों का कार्यक्रम आपकी पसंद, अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा के साथ। लीजिए अब सुनते हैं तेरे नाम फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। बोल हैं समीर के, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी तुषारनी और खुमेंद्र मसिया। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिहा, अनस और रेहान। पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका, मीनाक्षी और चंद्रप्रभा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक। अनारकली बाजार जगराव से हमारे श्रोता साथी हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्या, भाई सुच्चा पाठक। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से इसी गीत की फरमाइश की है चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और बेबी वान्या सिंगरौल ने। तो लीजिए आप सबकी पसंद का ये गीत

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में ये जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब ये विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला दे सुन सकते है।
1: हाँ, अभी तो शुरू होगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

अगली गीत की फरमाइश आई है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बीबी अनुष्का और राधिका गजभिये। जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ से विनोद खड़ से। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुजान सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी। दिल्ली शहर मोदी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। दौलतबाग मुरादाबाद से हमारे श्रोता साथी हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। सपना संगीता रोड इंदौर से इस गीत को सुनना चाहते हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। लीजिए आप सबकी फरमाइश पर पेश है राहत फतेह अली खान की आवाज़ में जन्नत 2 फिल्म का ये गीत। बोल हैं संजय मासूम के, संगीत निर्देशन है प्रीतम का।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, जिस्म फिल्म से। MM करीम के संगीत निर्देशन में बोल हैं नीलेश मिश्रा के। गीत को सुनना चाहा है इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम दिवांगन, चंपा दिवांगन, जगदीश दिवांगन, राजू दिवांगन। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी, गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण भाव खर्चे। सिमंदर पार्क वीरमगाम से अजीत प्रेमिला, भावेश, सन्नी, हेतल, कृष्णा और जैमिन भावसार। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हमारे श्रोता साथी हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू और रविंद्र सेन। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: कार्यक्रम के अंतिम गीत की फरमाइश आई है लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, इंदिरानगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू जगदीश, गोविंदा देवांगन, विशाल पायल, अक्षय कुमार देवांगन, बिलाईगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी और तृप्तेश देवांगन, ग्राम पहरा अहिरवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, बिरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनिया करमरकर, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से हमारे श्रोता साथी हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर पेश है भूल भुलैया फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं MG श्रीकुमार और श्रेया घोषाल की, बोल हैं समीर के और संगीत दिया है प्रीतम ने।

एमजी श्री कुमार और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म था भूल भुलैया, बोल थे समीर के, संगीत निर्देशन था प्रीतम का। श्रोताओं, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और भेजने चाहते हैं अपने फरमाइश, तो हमारा पता है आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, आकाशवाणी अंबिकापुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 497001। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

ಶುಭ್ರಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. और अब पेश है आज के मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे. कल होने वाली नीट पर पुनर्परीक्षा के लिए आज मॉक ड्रिल किया गया और कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करेंगे. इसके तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 490,54,00,000 रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी. राज्य में अब तक पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है. सरकार ने वन पट्टाधारी और विशेष पिछड़ी जाति वर्ग के किसानों को भी इस योजना से जोड़ा है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा. परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है. इसी कड़ी में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा कल 21 जून को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा और अन्य व्यापक इंतजाम किए गए हैं. एनटीए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया गया है. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे. इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है. रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज और कल किया जाएगा. इसके अलावा

0: हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमन डे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के ग्राम डोंड राही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने घोषणा की कि ये स्थल अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 37 लाख रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 2 मई को आयोजित की गई थी। विद्यार्थी अपना परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। कल होने वाली नीट पुनर्परीक्षा के लिए आज मॉक ड्रिल किया गया और कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। पेश है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज करेंगे हंसराज हंस की आवाज़ में इस गीत के साथ। लिखा है अमरदीप गिल ने, संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद ने।

हंसराज आनंद के स्वर में इस गीत के बाद लीजिए सुनते हैं तलत अजीज की आवाज़ में ये गज़ल। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन है समीर का।

मीडियम व्यू पर आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। लीजिए अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत। बोल हैं अजय झिंगरण के, संगीत निर्देशन है रवि पवार का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर

0: पुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल,

0: 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

यार तो बगैर जीना क्या है। ईद आई मेंढा यार नहीं आया, इधर पहाड़ी इलाके जाए थोड़ी पहाड़ी।

0: वो जो बैठे
1: कौन,
0: वो जो बैठे हैं, वो नहीं वो जो उनसे परे बैठी है।
1: देखो बड़े भैया की नजर कहाँ चली गई, आशक होने लगा है। क्या है?
0: वो जो बैठे
1: कौन,
0: वो नहीं वो जो उनसे परे बैठी, कोई जाके उनको कह दो।
1: क्या कहूँ?
0: कोई जाके

आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। पेश है कव्वालियों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज करेंगे नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में इस कव्वाली के साथ।

मीडियम व्यू पर और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं कव्वालियों का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में ये कव्वाली। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम कव्वाली नूरजहां की आवाज़ में।

0: नूरजहाँ की आवाज़ में इस कव्वाली के साथ ही कव्वालियों का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि

0: होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बात में लीजिए सुनते हैं चना की खेती से लाभ विषय पर सामयिक सुझाव।
2: किसान भाइयों, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होने के कारण दालें हमारे भोजन में विशेष स्थान रखती हैं। प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों की खेती की जा रही है। आज हम बात करेंगे चने की उन्नत कास्त के बारे में। भूमि का चयन। किसान भाइयों, चने की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में सफलतापूर्वक की जा सकती है। यदि सिंचाई साधन पर्याप्त नहीं है तो चने को भारी मिट्टी में तथा सिंचाई साधन पर्याप्त होने पर चने को हल्के मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। कन्हार भूमि चने की कास्त के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भूमि की तैयारी। चने की फसल को बहुत अधिक भुरभुरी जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। 2-3 जुताई कर मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़कर पाटा चला लें ताकि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे। यही नमी चने का अच्छा अंकुरण सुनिश्चित करती है। यदि भूमि का पीएच मान 6.5 से कम है तो भूमि की अम्लीयता में सुधार हेतु बुझा हुआ चूना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाएं। बुआई का समय। किसान भाइयों, चने की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करने से फसल को ठंड की लंबी अवधि मिलती है और उपज अच्छी प्राप्त होती है। यदि बुआई में देरी हो गई है तो बुआई 10 दिसंबर तक पूर्ण कर ही लें। विलंब से बुआई करने पर कीट का प्रकोप अधिक होता है। बीज की मात्रा एवं दूरी। समय से बुआई करने पर 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा विलंब से बुआई करने पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपयोग करें। कतारों के बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीजोपचार। बुआई से पूर्व 3 ग्राम थायरम या 1.5 मिलीलीटर कंटाफ या कार्बेंडाजिम व मैंकोजेब मिश्रित फफूंदनाशी 3 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से बीजों को उपचारित करें या जैविक फफूंदनाशी 3 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से बीजों को उपचारित करें। सिंचाई। किसान भाइयों, चने की फसल जल भराव को लेकर बहुत संवेदनशील है और यदि पर्याप्त सिंचाई करने के पश्चात उत्तम जल निकासी का प्रबंध नहीं है तो अंकुरण तो प्रभावित होगा ही, साथ ही उकठा रोग के फैलाव की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ेगी। चने की फसल में मुख्यतः 2 सिंचाई पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई फूल आने से पहले यानी बुआई के लगभग 40 दिन बाद एवं दूसरी दाना भरते समय यानी बुआई के 75 दिन बाद दें। पुष्प फूल आने के बाद सिंचाई करने पर फूल झड़ने की समस्या आती है और यदि दूसरी सिंचाई दाना भराई के समय ना दी जाए तो दाना पोचा रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। चने में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। चने में हमेशा हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर या सीपेज पद्धति से करनी चाहिए। निंदाई गुड़ाई एवं अन्य शस्य क्रियाएँ। चने में नींदा जैसे भथुआ, सेंजी आदि।

0: दी फसल के शुरुआती दिनों में फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अतः खेत की शुरुआती 45 दिनों तक निंदा मुक्त रखना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले निंदा के लिए पेंडीमेथिलीन 30 EC 750 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर सक्रिय तत्व का छिड़काव बोनी के 3 दिनों के अंदर प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए एवं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों जैसे सावा, घास, कांस, दूब आदि के लिए क्यूजोलोफोप 40 से 50 ग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बोनी के 15 से 20 दिनों बाद करना चाहिए। चने की फसल 25 से 30 दिन की होने के पश्चात उसकी खुटाई करना लाभदायक होता है। इससे इसमें शाखाओं की संख्या बढ़ती है जिससे उपज बढ़ती है और पौधे का घेराव भी बढ़ता है जो निंदा की बढ़वार को नियंत्रित भी करता है। चने में कीट नियंत्रण। चने की इल्ली, इस कीट की हानिकारक अवस्था इल्ली होती है। छोटी इल्लियाँ पौधों की मुलायम पत्तियों को खाकर क्षतिग्रस्त करती है एवं मध्यम आकार की इल्लियां फली को छेदकर उनमें विकसित हो रहे दानों को अपना आहार बनाती है। प्रबंधन। खेत में 1 मीटर ऊंची खूंटियां 50 नग प्रति हेक्टेयर की दर से गड़ा देने से पक्षी उस पर बैठकर इल्लियों का भक्षण करते हैं। चने की उन्नत कास्त का उपयोग करने से भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। चने का कटुआ, यह रात्रि चर कीट है जिसकी इल्लियां पौधे को सतह से अथवा कोमल टहनियों का काट काट कर जमीन पर गिरा देती है जिसके कारण पौधों की बढ़वार व उपज में कमी आ जाती है। प्रबंधन। शाम के समय खेत के आसपास घास का ढेर लगा दें ताकि इल्लियां उनमें छुप सकें तथा अगले दिन दोपहर के वक्त इन ढेरों में आग लगा दें। किसान भाइयों, इस तरह से कुछ सावधानी के साथ चने की खेती हमारे लिए लाभदायक हो सकती है।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे चने की खेती से लाभ विषय पर सामयिक सुझाव। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.2 पर यह आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सखियों के लिए हम ले आए हैं आज घर आंगन कार्यक्रम इस दोपहर। स्वागत है श्रोता बहनों आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में जिसे लेकर आप सखियों के बीच उपस्थित हूं मैं आपकी सखी शुभिता। कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों हम बहनें अपने घर को सजाने संवारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है ना, और हम सभी की खास दिलचस्पी भी होती है और हो भी क्यों ना, जितना प्यार और लगाव हमें अपने परिवार से है उतना ही अपने घर से होता है ना सखियों। बहनों घर केवल रहने की जगह नहीं होती बल्कि हमारी पहचान सुरक्षा और खुशियों का आधार भी होता है। लेकिन दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो युद्ध हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। बहनों आज एक विशेष दिवस है, जी हाँ विश्व शरणार्थी दिवस, जो हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। आज के समय में कई जगह पर कई शरणार्थी इधर से उधर भटक रहे हैं, उन्हें शरण देने वाला कोई नहीं लेकिन फिर भी उनकी समस्या को सुनने वाले कई लोग हैं, उन्हें जानने वाले और उनकी मदद करने के लिए कई हाथ आगे आते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज 20 जून को यह दिवस मनाया जाता है। बहनों विश्व शरणार्थी दिवस का उद्देश्य केवल शरणार्थियों की समस्याओं को सामने लाना नहीं बल्कि उनके साहस आत्मविश्वास और जीवंतता को सम्मान देना भी है। सखियों जब किसी परिवार को अपना देश या घर छोड़ना पड़ता है तो महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें नई जगह पर सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार जैसी कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद साहस और धैर्य के साथ वे अपने परिवार को संभालती हैं और नए जीवन की शुरुआत करने का प्रयास करती हैं। अपने परिवार को संभालते हुए बच्चों का पोषण करते हुए वो इस समस्या के समाधान की ओर भी बढ़ती हैं। ये दिवस

उन लोगों के संघर्ष और साहस को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। ये दिन हमें मानवता, करुणा और सहयोग का संदेश देता है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में हमें वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है का संदेश देती है। अतः हमें ज़रूरतमंद लोगों के लिए संवेदनशील होना होगा, मानवता की भावना को मजबूत बनाना होगा और एक बेहतर मानवीय समाज के निर्माण में अपना योगदान भी देना होगा। क्योंकि यदि हम महिलाएं आगे आएंगी तो ज़रूरतमंदों की मदद भी कर सकेंगी और इन समस्याओं को हम दूर भी कर सकेंगे। तो बहनों, आज के घर आंगन कार्यक्रम में बहुत सारी और ढेर सारी बातें भी आपसे करनी है, तो आइए उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म रिफ्यूजी से। इस गीत को शब्द रचित किया है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। आवाज़ें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: सखियों, इस संदेश से पहले आपने सुना फिल्म रिफ्यूजी का गीत, जिसमें आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। आप सुन रही हैं घर आंगन कार्यक्रम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और हम आपके लिए ले आए हैं आज घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत, जी हाँ, आज शनिवार है, शक्ति अभिव्यक्ति क्रम। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं शक्ति अभिव्यक्ति क्रम की ओर। स्वागत है श्रोता बहनों आप सभी का आज के शक्ति अभिव्यक्ति क्रम में। आज इस क्रम में सखियों हम एक ऐसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व के विषय में बात करेंगे जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और दृढ़ संकल्प के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं भारत की प्रसिद्ध महिला योग गुरु वी नानमल जी के विषय में। जी हाँ, वी नानमल जो तमिलनाडु से हैं, जिन्हें पूरे देश में प्यार से योग दादी के नाम से जाना जाता है। 24 फरवरी 1920 को तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में एक साधारण कृषक परिवार में जन्मी वी नानमल ने मात्र 8 वर्ष की आयु में अपने पिता से योग सीखना शुरू किया। जी हाँ, ये योग दादी ही थी जिन्होंने 99 वर्ष की उम्र में सबको अचंभित कर दिया था। गुलाबी कलर की साड़ी पहने हुए आसन करते हुए, जी हाँ, मयूर आसन, योग आसन करते हुए उन्हें लोगों ने देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए, और वो थी योग दादी। 8 वर्ष की उम्र से जब उन्होंने अपने पिता से योग सीखा तब उन्हें ये विषय ज्ञात नहीं था कि आगे चलकर वो 10,000 लोगों को योग सिखाएंगी, वो भी मुफ्त में। योग उनके परिवार की परंपरा का हिस्सा था जिसे उन्होंने पूरे समर्पण के साथ अपनाया और जीवन में आगे बढ़ाया। 8 वर्ष की आयु से इनके पिता द्वारा सिखाए गए योग विद्या से नानमल जी ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। यदि वी नानमल के योग गुरु की सफर की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत उनके विवाह के उपरांत हुई, वो भी उनके घर से ही। हाँ सखियों, विवाह के पश्चात उन्होंने देखा कि उनकी सासू माँ गंभीर पीठ दर्द से परेशान रहती हैं। नानमल जी ने उन्हें योग का अभ्यास कराया, धीरे धीरे उनकी समस्या दूर हो गई और यहीं से शुरू हुआ उनका लोगों को योग सिखाने का सफर, जो जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रहा। वर्ष 1972 में उन्होंने कोयंबटूर में ओजोन योग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जिसमें उन्होंने लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में योग सिखाया। और उनकी पहचान केवल योग गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में बनी जिन्होंने अपने ज्ञान और समाज से कल्याण के लिए कई लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और आज उनके सिखाए गए लगभग 600 से अधिक जो शिष्य हैं वो बाहरी देशों में योग शिक्षा दे रहे हैं। वी नानमल की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका अनुशासित जीवन। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती थीं, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाती थीं और संतुलित शाकाहारी भोजन करती थीं। उन्होंने कभी भी एलोपैथिक दवाइयां नहीं ली। वे जीवन शैली में अपने आप को इस तरह से ढाल चुकी थीं कि 99 वर्ष की उम्र में भी वह तरह तरह के आसन करती थीं। शीर्षासन, मयूरासन जैसे कठिन योगासन बड़ी सहजता से कर लेती थी। उनकी ऊर्जा और स्फूर्ति देखकर युवा भी प्रेरित हो जाते थे। योग के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इससे पहले उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से

ये भी और भी कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। 99 वर्ष की आयु में भी वे प्रतिदिन 100 से अधिक छात्रों को योग सिखाती थी। उन्होंने अंतिम समय तक अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की और योग शिविरों में लोगों को योग सिखाए। 26 अक्टूबर 2019 को बिस्तर से गिरने के बाद लगी चोट के कारण वे हमारे बीच नहीं रहीं। कोयम्बटूर में ही उनका निधन हुआ। वी नानमल जी का जीवन हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से व्यक्ति किसी भी उम्र में सक्रिय और प्रेरणादायक जीवन भी जी सकता है। वे नारी शक्ति, आत्मविश्वास और समर्पण की सशक्त प्रतीक थी। बहनों, शक्ति अभिव्यक्ति क्रम में आज हमने योग दादी, योग गुरु वी नानमल, जो कोयम्बटूर में जन्मी थी, तमिलनाडु की रहने वाली, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, उनके विषय में बात करी। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। इस गीत में आवाज़ है लता मंगेशकर की। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को शब्द रचित किया है पंडित नरेश शर्मा ने।

सखियों, अभी लता मंगेशकर के स्वर से सजा आपने गीत सुना और लता मंगेशकर ने भी अपनी जीवन में अपने गीत के माध्यम से लोगों तक जन जन पहुँची। ठीक उसी तरह योग के माध्यम से वी नानमल जी भी योग के माध्यम से आज देश विदेश में अपने नाम से और उनके शिष्यों के माध्यम से पहुँच रही हैं। ऐसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा और सोच आज लोग अपना रहे हैं और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हमें भी स्वस्थ जीवन अपनाना है तो योग को भी अपनाना होगा। और कल यानी कि 21 जून को हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाने वाले हैं, तो वी नानमल जी की सीख को अपनाते हुए हमें भी प्रेरणा लेनी होगी कि हम भी अपने दैनिक जीवन में योग को हिस्सा बनाएं और स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं। आज का शक्ति अभिव्यक्ति क्रम बस यहीं तक। बहनों, आज हम आपके लिए ले आए हैं व्यंजन विधि और गीत संगीत भी। जी हाँ, आज है शनिवार और हम आपके लिए ले आते हैं व्यंजन विधियाँ। तो आपको जैसा पता है कि अब थोड़ा थोड़ा मौसम परिवर्तित हो रहा है और मौसम परिवर्तित होने के साथ साथ बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, और हमेशा ये आपकी सोच का विषय होता है कि कल बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है जो झटपट से बन जाए और बच्चे पसंद भी करें। जी हाँ बिल्कुल, और आप भी तरह तरह के व्यंजन बनाती होंगी, लेकिन जो घर में उपलब्ध है और जल्दी से बन जाए। अक्सर हम प्रयोग करते हैं कि बच्चों को कुछ ऐसा खिलाएं जो पौष्टिक भी हो और अच्छा भी लगे उन्हें और थोड़ा चटपटा भी हो। जी हाँ, आप इसके लिए हम आज आपके लिए ले आए हैं वेजिटेबल बेसन का चीला। जी हाँ, आप अक्सर बनाती होंगी कई तरह के चीले, और ये भी बहुत सामान्य सा चीला है जिसे आप झटपट बना सकती हैं और आपके पास सामग्री भी उपलब्ध होगी। तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से इस सामग्री को। सामग्री इस प्रकार है, बेसन तो उपलब्ध ही रहता है घर में, अक्सर आप भजिए पकौड़े बनाती ही रहती हैं। एक कप बेसन, एक छोटी गाजर कद्दूकस की हुई, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च यदि आपके पास हो तो कटी हुई, और गोभी किसी हुई यदि आपके पास हो, और उसमें बारीक कटी हुई पत्ता गोभी भी काट सकती हैं, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा जीरा पाउडर हल्की सी और आधी चम्मच से भी कम, क्योंकि बच्चे मिर्च थोड़े कम खाते हैं, लाल मिर्च और अजवाइन थोड़ी सी इसमें चुटकी भर आप ले सकती हैं। विधि इस प्रकार है, एक बर्तन में बेसन लें और उसमें पानी मिलाकर घोल कर लें। अब इसमें गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, पत्ता गोभी और नमक और थोड़ी सी हल्दी यदि आप डालना चाहें तो डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे अच्छे से फेंटें। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर लगातार एक ही मोड पे आपको इसको फेंटना है, एंटी क्लॉक नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको चीला बनाना है तो पतला और अच्छा बनेगा। तवे को गर्म करें और हल्का तेल लगाएं। अब घोल को तवे पर फैलाकर दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरा होने तक इसमें आप इसे पकाएं, और फिर स्वादिष्ट बेसन का चीला तैयार है, और इसे हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ आप बच्चों के टिफ़िन में पैक कर सकती हैं और जितना चाहें बच्चे खा सकते हैं, और ये पोषक तत्व भी इसमें शामिल हैं। तो ये रहा बेसन के चीले की विधि। और भी विधियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म पहेली से, और इसमें आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम की। इस गीत को शब्द रचित किया था गुलजार ने और संगीत से सजाया था MM करीम ने। बहनों, जैसा कि आप सभी कोई जानती हैं कि कल यानी कि आने वाले दिनों में योग दिवस बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, तो आप भी कल अवश्य रूप से योग करें। पूरे घर आंगन परिवार से की ओर से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि हम महिलाएं स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि कल आप योग ज़रूर करेंगी और स्वस्थ भी रहेंगी, है ना। तो आपको आज हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें मेल के माध्यम से, मंगलवार को हमारा घर आंगन मेल प्रसारित होता है, तो आप हमें मेल कर सकती हैं। हमारे जो मेल आईडी है वो है घर आंगन एयर एट द

@gmail.com। और आज के घर आंगन कार्यक्रम से अब विदा लेने का वक्त हो चला है बहनों। हम बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन समय की जो सुइयां हैं वो इशारा कर रही हैं कि आपसे विदा लेने का वक्त हो रहा है। तो अपने घर परिवार को संभालिए, अपने घर आंगन को सजाते रहिए, संवारते रहिए और तरह तरह के व्यंजन बनाते रहिए। आज के घर आंगन कार्यक्रम से अपनी सखी शुभिता को दीजिए विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। पेश है श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आज के सुहाने दिन आपकी पसंद के गीतों के सफर में मैं आपका रेडियो हम सफर मृदुल वर्मा आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ईमेल की गूंज में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ।

स्वागत है साथियों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। आज हमारे कार्यक्रम में पहली फरमाइश आई है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी की। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर भड़ी महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहते हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और इनका पूरा परिवार। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से इस गीत को सुनना चाहा है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पाडसवणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है राशिद अली की आवाज़ में जाने तू या जाने ना फिल्म के गीत। बोल हैं अब्बास टायर वाला के, संगीत निर्देशन है ए आर रहमान का।

अगले गीत की फरमाइश आई है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुकटुक की, ग्राम पंचायत कौशलपुर भैंसामुड़ा रामानुज नगर श्रीनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, बिमला सिंह वडिंगखेड़ा पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते हैं। मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी, बुलढाणा वरसिंघी महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक, जिला किशनगढ़ बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और वर्षा सुमन। लीजिए आप सबकी फरमाइश पर पेश है मोहित चौहान की आवाज़ में दिल तो बच्चा है। फिल्म का ये गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा के साथ। कार्यक्रम में अगला गीत है छिछोरे फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, संगीत है प्रीतम का। सुनना चाहा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले, बुढ़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बुलढाणा महाराष्ट्र शहगांव से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले, गजानंद सालोनकर, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी और शबनम मानो, जेल रोड बक्सर से राज एच डी अंसारी और फातमा नाज, गांव नाथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, उत्तम नगर दिल्ली से हमारे रेडियो श्रोता हैं बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल और भानु प्रकाश, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तैड़े, वसंतराव भोजने और पीएस नावकर, बेर्डी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची तनु करमरकर, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा।

बालूजा और सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और शरीफ नवाज। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत आप सभी की फरमाइश पर।

लीजिए पेश है झूम बराबर झूम फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान और लक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में। शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में बोल हैं गुलजार की, गीत की फरमाइश की है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने, दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, ग्राम सौंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार चंदन, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ग्राम पंचायत खोंगला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुर्नी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा, राजकोट से पूजा पायल और प्रवीण सोनी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निपवानी, संगीता, आकाश, आयुष, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए सुनते हैं आप सभी के फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, और इस अंतिम गीत की फरमाइश आई है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से। मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा जिला सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, दशरथ गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रकृति गुप्ता और रामाधार राजवाड़े। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बीबीसिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नासिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोदा रामटेके, श्राव्या रामटेके। बालाजी चौक से पोटी श्रीवास, शेख आजाद, पुपू रानी। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय। दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले। आप सभी ने सुनना चाहा है अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ओम शांति ओम फिल्म का गीत। लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का।

अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत के साथ ही अपने रेडियो साथी मृदुल वर्मा को आपका पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त करने की आज्ञा दें।

0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रवति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज

0: पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री

0: उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित

0: प्रदर्शित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत अयोग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने

0: वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम का आगाज करेंगे दलेर मेहंदी की आवाज़ में इस गीत के साथ।

दलेर मेहंदी की आवाज़ में इस गीत के बाद लीजिए पेश है सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। लिखा है फैज़ अनवर ने, संगीत निर्देशन है निखिल विनय का।

तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। लीजिए अब सुनते हैं लकी अली की आवाज़ में ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं लकी अली।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाज़ में ये गीत। संगीत निर्देशक थे संदेश सांडिल्य। इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 200

30.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुनिएगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर आप सुनिएगा कुछ सरगुजिया लोकगीत। कुछ फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर और कार्यक्रम चित्रपट संगीत में रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे शाम 7:05 पर। ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और भविष्य का भारत। शाम 7:30 पर चौपाल के ही अंतर्गत कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सुनिएगा बकरी पालन से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और प्रधानमंत्री प्रणाम योजना विषय पर सामूहिक सुझाव। इसके साथ ही आप सुनिएगा मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आज कर सवाल। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 10 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे विवेक करमहे का ठुमरी और दादरा में गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। इसी के साथ ही हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। इस दौरान आप हमारे FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हमसे जुड़े रह सकते हैं, जिसमें हम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का अनुप्रसारण करेंगे। शाम 4:58 पर अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की सांझकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभा की शुरुआत में लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पूर्णिपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, पेटला, ललितपुर, सरगा, बरवाली, बरडांड, दातीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 141 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं। सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आवाज महेंद्र कपूर की है।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: लीजिए प्रस्तुति फिल्म मिला से ये प्यारा सा भजन। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, जपिंदर और अरविंदर सिंह के। संगीत निर्देशन है अनु मलिक, राजेश रोशन और लेस्ले लेविस के। सब दृश्य है देव कोहली और समीर की।

लीजिए फिर से कार्यक्रम का अंतिम भजन, सुदेश भोसले, सपना अवस्थी और प्रफुल्ल दवे के स्वर में। धुन दिया है आनंद मिलिंद ने, सब दृश्य है समीर की और फिल्म का नाम है

इस प्यारे से वचन के साथ ही कार्यक्रम वचन संध्या यही समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए फिर से युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम यूं वाणी।

नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की शाम में। तो चलिए करते हैं आज के युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। दोस्तों, आज हम एक सवाल लेकर आए हैं जो शायद हर इंसान रोज खुद से पूछता है, कल किसने देखा। जरा सोचिए दोस्तों, हम कहते हैं कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे, कल मम्मी से आराम से बातें करेंगे, कल दोस्तों से मिलेंगे, कल कल और कल। पर क्या कभी किसी ने भी देखा है कि वो कल सच में आएगा भी या नहीं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, कल की फिक्र में आज मत खो देना, कल की फिक्र में आज मत खो देना, जो पल हाथ में है उसे यूं ही मत रो देना। दोस्तों, एक मज़ेदार बात बताऊं,

दुनिया का सबसे बड़ा झूठ शायद यही है, अरे अभी बहुत टाइम है। और यही सोचते सोचते कई लोग अपने सपने टाल देते हैं। कई लोग अपने माता पिता को बाद में बात करेंगे कहकर छोड़ देते हैं, और कई आई लव यू कहने तक में देर कर देते हैं। फिर एक दिन वक्त कहता है, अब बहुत देर हो गई। दोस्तों, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारा दिमाग भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाता है। इसी वजह से तनाव बढ़ता है, खुशियां कम हो जाती हैं। जिस कल को हमने देखा ही नहीं, उसके डर में हम आज भी जीना छोड़ देते हैं। तो क्यों ना आज ही किसी अपने को फ़ोन कर लिया जाए, माँ के हाथ का खाना मोबाइल देखे भी ना खा लिया जाए, पुराने दोस्त को मैसेज कर लिया जाए, और अगर कोई सपना है तो उसका पहला कदम आज अभी इसी पल उठा लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, कल अगर आया तो बोनस होगा, और अगर नहीं आया तो कम से कम आज पूरी तरह जी लेने का सुकून तो रहेगा। दोस्तों, जिंदगी कोई किताब नहीं है जहां अगला पन्ना जब चाहे तब पलट लें। जिंदगी तो एक सांस है जो चली जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए मुस्कुराओ, दिल खोलकर हंसो, अपनों से प्यार जताओ, और हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही सबसे खूबसूरत दिन है। तो इस खूबसूरत चर्चा के नाम आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अंदाज का ये गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हमारे सैटरडे स्पेशल प्रोग्राम एक ही फिल्म से में।

दोस्तों, जब मोहब्बत दिल में उतर जाए तो नफ़रत की सबसे ऊंची दीवार भी छोटी पड़ जाती है। लेकिन अगर प्यार और दुश्मनी आमने सामने आ जाए तो कहानी बनती है जुनून की, इश्क की और कुर्बानी की। तो दोस्तों, हमारे आज के इस क्रम में आज हम एक ऐसी ही फिल्म के साथ हाजिर हैं जिसमें इश्क है, जुनून है, कुर्बानी है और खूब सारा एंटरटेनमेंट है। तो आइए करते हैं हमारे इस एंटरटेनिंग जर्नी की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, अभी आपने सुना भूमि त्रिवेदी की आवाज़ में फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला का ये गीत। और इस गीत के साथ आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला के बारे में। साल 2013 में 15 नवंबर को रिलीज़ हुई इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने किया। अपनी भव्य प्रस्तुति, शानदार सिनेमेटोग्राफी और दमदार कहानी के लिए मशहूर भंसाली ने इस फिल्म को और भी यादगार बना दिया। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने राम का किरदार निभाया, और दीपिका पादुकोण, जो लीला के रूप में नजर आई। इनके अलावा सुप्रिया पाठक, ऋचा चड्ढा और शरद केलकर ने भी अपनी दमदार अदाकारी से फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाया। इस फिल्म के बारे में और भी बातें होंगी, पर उससे पहले आइए सुनते हैं आदित्य नारायण की आवाज़ में इस फिल्म का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये कहानी दो ऐसे परिवारों की है जिनकी दुश्मनी पीढ़ियों पुरानी है, लेकिन उसी नफरत के बीच राम और लीला का प्यार जन्म लेता है। दोनों हर मुश्किल का सामना करते हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां प्यार और कुर्बानी एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसका भव्य विजुअल ट्रीटमेंट, गुजराती संस्कृति की खूबसूरत झलक और दिल को छू लेने वाला संगीत। नगाड़े संग ढोल लहू मुँह लग गया जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे फिल्म का ये सबसे लोकप्रिय गीत श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज़ में।

दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि उस कीमत की भी है जो कभी कभी सच्चे प्यार को चुकानी पड़ती है। तो अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद है जिसमें इश्क का जुनून हो, भावनाओं की गहराई हो और हर दृश्य पर दिल पर अपनी छाप छोड़ जाए, तो गोलियों की रासलीला रामलीला आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। तो कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शाहिल हदा, उस्मान मीर और शब्द फरीदी की आवाज़ में इसी फिल्म का ये गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना शाहिल हदा, ओस्मान मीर और शब्द फरीदी की आवाज़ में फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला का ये गीत। शब्द रचना थे सिद्धार्थ गरिमा की, संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने। और इसी के साथ हमारा आज का ये क्रम भी बस यहीं तक।

वक्त हो चला है दोस्तों आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बता देते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर और फरमाइशी क्रम युवा पसंद। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत, आपकी दोस्त शालिनी चौबे को नमस्कार।

0: युवा श्रोता भी सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस

0: के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
0: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का विचार, आत्मविश्वास विषय पर। वाचन एवं संकलन है मृदुल गुप्त का।
3: मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपने भीतर असीम संभावनाओं का भंडार होते हुए भी भय और संदेह के जाल में उलझकर स्वयं को सीमित कर लेता है। जबकि सच ये है कि सफलता किसी बाहरी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर पलने वाले विचारों, भावनाओं और संकल्पों की स्वाभाविक परिणति है। जो व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस जुटा लेता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूने में समर्थ होता है। भय मनुष्य का सबसे पुराना साथी है। कभी असफलता का भय, कभी समाज की आलोचना का भय, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता का। भय का स्वभाव ही ऐसा है कि ये हमारे मन में संदेह को जन्म देता है और संदेह धीरे धीरे आत्मविश्वास को

0: क्षीण करता चला जाता है। जब मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, तभी हमारी हार का आरंभ हो जाता है। मगर जीवन की दिशा वही व्यक्ति बदलता है जो इस प्रश्न को चुनौती में बदल देता है। वो कहता है कि मैं अवश्य करूंगा। यही आत्मविश्वास का स्वर है जो भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर करती है। जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है तब वो परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। हमारा मन एक उर्वर भूमि के समान है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वही फलित होता है। अगर हम इसमें भय, नकारात्मकता और संदेह के बीज बोते हैं तो परिणाम स्वरूप निराशा, असफलता और असंतोष की फसल उगती है। इसके विपरीत यदि हम अपने मन में साहस, आशा और श्रेष्ठ लक्ष्य के विचारों को स्थिर रखते हैं तो यही विचार हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें सफलता के पथ पर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का अटल सत्य है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संतुलित और दृढ़ बनाए रखता है वही विजयी होता है। सकारात्मक सोच हमें ये सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है और हर संघर्ष के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। आंतरिक शक्ति का जागरण भी इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम अपने भीतर के भय और संदेह को त्याग कर आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपनाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति स्वतः जागृत होने लगती है। ये शक्ति हमें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखती है। यही आंतरिक शक्ति हमें विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण जीवन में ये विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब चारों ओर तुलना, आलोचना और अनिश्चितता का वातावरण हो तब अपने भीतर विश्वास बनाए रखना चुनौती बन जाता है। मगर यही वो समय होता है जब हमें अपने मन को सशक्त बनाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि दूसरों की राय हमारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी वास्तविक पहचान है। इस बात की जरूरत है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और संकल्प को दृढ़ बनाए रखें। भय और संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बनाएं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वास्तव में सफलता उसी के कदम चूमती है जो अपने मन की सीमाओं को तोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारी सोच ही हमारा पथ प्रदर्शक है। अगर ये सोच साहस, आशा और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: इसवा किश्त जारी कर ही छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाही और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कुतिले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में NEET UG के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ले कुछ एक देर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के तारकेश्वर ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के 23वां किस्त जारी कर ही। एकर तहत देश के 9,44,00,000 किसान मन के बैंक खाता में 18,880 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि सीधा भेजे जाही। ये योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 ले ज्यादा किसान मन के बैंक खाता में 490,54,00,000 रुपया ले ज्यादा के राशि के अंतरण करे जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ह काली नई दिल्ली में राखे गए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपया के प्रोत्साहन राशि के वितरण करही। ए मौका में प्रधानमंत्री ह कहिन की 21वीं सदी में अवसर उही देश के होही जेन कुशल प्रतिभा मन के पोषण करही, नवाचार ला बढ़ावा दही और गुणवत्ता के ऊंचा मानक ला बनाए रखी। श्री मोदी ह कहिन है कि अवैया बछर में भारत के युवा मन दुनिया के विकास, नवाचार और उद्यमिता ल तेजी ले बढ़ाए में आगू होही। ए योजना पर पहली पैत रोजगार पाने वाला कर्मचारी मन ल 15,000 रुपया तक के प्रोत्साहन दे जावत है और अतकाह रोजगार देने वाला नियोक्ता मन ल हर अतिरिक्त कर्मचारी ऊपर हर महीना 3,000 रुपया के प्रोत्साहन दे जावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बचर पूरा होए के मौका में प्रदेश में आने आने जगह में योजना मन के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर के आयोजन करे जावत है। यही कड़ी में दुर्ग में रखे गए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ह शामिल होइस। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए श्री उइके ह कहिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश ह विकास और विरासत के संरक्षण के दिशा में बड़का प्रगति करे है। ओमन कहिन की केंद्र सरकार ह समाज के आखिरी मनखे के विकास ल ध्यान में रखत हुए कई ठिन जन कल्याणकारी योजना लागू करे है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार समेत अब्बड़ अकन जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मन शामिल रहिन। बाद में पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ह कहिन की केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, विकास और विश्वास के मंत्र के संग चलाए जावत योजना के सकारात्मक प्रभाव ले आज लोगन के जिंदगी में बदलाव आए हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जही। ए बछर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखे गए है। एकर बर प्रदेश में तैयारी पूरा कर ले गए है। राज्यपाल रमीन डेका ह राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम के मुख्य पहुना हुई। उहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई में सरगुजा जिला में बिहनिया 7 बजे सामूहिक योग अभ्यास होई। एक कार्यक्रम के अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ह करी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ह बिलासपुर में, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ह दुर्ग में, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ह कबीरधाम में और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में होइया कार्यक्रम के मुख्य पहुना होई। प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मन के प्रशिक्षण शिविर आज ले रायपुर जिला के अभनपुर में शुरू होए है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ह पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए बताएं कि ए शिविर में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ह शामिल होइन है। उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ह घलो ए शिविर में शामिल होही। शिविर में जिला अध्यक्ष मन ल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग कोती ले प्रशिक्षण दे जावत है। संगे संग विषय विशेषज्ञ मन कोती ले हाल फिलहाल के विषय ऊपर जानकारी घलो दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमारे फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA कोती ले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में NEET UG के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जाही। एकर बर सुरक्षा के कड़ा व्यवस्था करे गए है। परीक्षा मझनिया 2 बजे ले संझा 5:15 तक होही। परीक्षार्थी मल्ला बिहनिया 11 बजे ले मझनिया 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होही। एकर बाद अवैया कोनो भी अभ्यर्थी ला भीतर नहीं करे जाही। NTA ह नीट UG के पुनर्परीक्षा देवैया उम्मीदवार मन बर एक ठिन आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू करे है। NTA ह बताइस है कि सब्बो आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश ह सिर्फ सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम ले ही भेजे जाही। एति रायपुर जिला में नीट परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन बर जिला प्रशासन और NTA ह जरूरी तैयारी पूरा कर ले है। जिला नोडल

0: अधिकारी और कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी सिंह बताइन कि जिला में 25 केंद्र बनाए गए हैं। ओमन परीक्षार्थी मन ले बेरा ले पहली परीक्षा केंद्र पहुंचे के अपील करे है। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हर नीट परीक्षा के परीक्षार्थी मन के सुविधा पर विशेष रेल सेवा की व्यवस्था करे है। रायपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद बताइन कि रेलवे कोती ले कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेन आज और कल चलाई जाही। एकर अलावा हसदेव एक्सप्रेस के अस्थायी विस्तार दुर्ग स्टेशन तक करे गए है। एनटीए हर नीट यूजी दोबारा परीक्षा ले पहली मानक तैयारी के निरीक्षण पर आज देश भर में मार्क ड्रिल करीस। इही कड़ी में रायपुर समेत प्रदेश के आने आने परीक्षा केंद्र में मार्क ड्रिल करे गए। प्रदेश में लैका मन के शुरुआती शिक्षा ल व्यवस्थित करे के उद्देश्य ले विद्यारंभ अभियान चलाए जावत है। एकर तहत आंगनबाड़ी केंद्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरा करैया 6 बछर के लैका मन ल विद्यारंभ प्रमाण पत्र दे के स्कूल में भर्ती करे जावत है। ए पहल के उद्देश्य लैका मन के जीवन में शिक्षा के नवा चरण के शुरुआत ल तिहार के रूप में मनाना और आंगनबाड़ी ले स्कूल तक के सफर ल सरल और सुघर बनाना है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला में कुपोषण के खिलाफ सुपोषित बचपन अभियान शुरू करे गए है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हा अभियान के शुरुआत करत हुए कहिन कि स्वस्थ लैका ही देश के मजबूत भविष्य है। अभियान में जिला के 9000 कुपोषित लैका मल्ला 6 महीना तक हफ्ता में 6 दिन पौष्टिक लाड़ू दे जाही। जेखर निर्माण महिला स्व सहायता समूह करही। लैका मन के स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल के व्यवस्था घलो करे गए है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ल छत्तीसगढ़ के सब्बो आकाशवाणी केंद्र एके संग रिले करही। ए दारी के अंक मा आप मन कोरबा जिला के बारे में जानकारी सुनिहा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए गए है। महिला और बाल विकास विभाग ह प्रदेश के प्रतिभाशाली लैका मन ले ए राष्ट्रीय पुरस्कार पर आवेदन करे के अपील करे है। ए पुरस्कार 5 ले 18 बछर के ओ लैका मन ल दे जाते जे मन बहादुरी सामाजिक सेवा पर्यावरण ल बचाए खेल कला संस्कृति विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसन क्षेत्र में सुघर उपलब्धि हासिल करे है। आवेदन सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम ले स्वीकार करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री अब ले कुछ एक देर में पश्चिम बंगाल ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 23वां किस्त जारी करी। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जही और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कोती ले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में नीट यूजी के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं रामचर्चा गीत।

छोटे साजिन गीत के साथ ही सरगुजा लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए फिर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं फिल्म लम्हे से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है शिव हरि ने और आवाज़ दी है लता मंगेशकर हरिहरण ने।

कार्यक्रम माधुरी में लीजिए प्रस्तुत है फिल्म लगान से ये प्यारा सा गीत, आवाज उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर और श्रीनिवास के, संगीत निर्देशन है ए आर रहमान का और सब दृश्य है जावेद अख्तर की।

0: फिल्म लगान के इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम माधुरी यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने।

0: के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी की। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्यपाल रायपुर और मुख्यमंत्री सरगुजा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एनटीए द्वारा कल छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से अभनपुर में शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 490 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कुनकुरी के सलिया टोली स्थित आत्मानंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमन डे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी सवाल करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस बीच आज केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर द्वारा हाट कचौरा में एक दिवसीय योग शिविर का किया गया। कार्यक्रम में महापौर संजय पांडे शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा कल 21 जून को छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। एनटीए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया गया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रायपुर रेल मंडल प्रबंधक दयानंद ने बताया कि रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज और कल किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है।
1: देखिए, जो नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है, इस बार इसके लिए विशेष तैयारी की है हम लोगों ने। एक तो स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जो आज और कल

0: दोनों दिन चलेगी, जो कोरबा से दुर्ग और दुर्ग से कोरबा, ये मेमू हम लोग चला रहे हैं छात्र स्पेशल करके। दूसरा जो हमारी कोरबा से रायपुर चलती है ट्रेन, उसको हम लोगों ने दुर्ग तक एक्सटेंड किया है, ताकि जो दुर्ग बिलाई जाने वाले लोग हैं उनको इस ट्रेन से लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो दल्ली रजारा सेक्शन है, जो मेमू चलती है, वो 12 को से चलाएंगे फॉर एग्जामिनेशन। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग स्टेशन में स्पेशल अफसर की ड्यूटी लगाई गई है, मे आई हेल्प यू बूथ मैंड रहेंगे, और जितने सेंटर की जानकारी है, कहाँ सेंटर पड़ेगा, कैसे जाएंगे, ये सारी जानकारी मे आई हेल्प यू बूथ से एग्जामिनी है वो ले सकते हैं।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ने कहा कि केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन, विकास और विश्वास के मंत्र के साथ संचालित योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव से आज लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
2: इन 12 वर्षों की जो विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का जो लेखा जोखा है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए, सेवा, सुशासन और विकास, विश्वास को लेकर जो जनकल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश के अंदर व्यक्ति व्यक्ति के चेहरे पे जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है, राष्ट्र ने विकास की दिशा में जो करवट बदली है, वैश्विक पटल पर राष्ट्र का जो वैभव बढ़ा है, राष्ट्र की आंतरिक स्थितियां और राष्ट्र की चतुर्दिक सीमाएं जिस तरह से सुरक्षित है, आज इन सभी विषयों को लेकर आज का ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन था।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से रायपुर जिले के अभनपुर में शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस शिविर में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट शामिल हुए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल इस शिविर में शामिल होंगे। शिविर में जिला अध्यक्षों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा समसामयिक विषयों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से विद्यारंभ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके 6 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के जीवन में शिक्षा के नए चरण की शुरुआत को उत्सव के रूप में मनाना तथा आंगनबाड़ी से विद्यालय तक के सफर को सहज और सुगम बनाना है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कुपोषण के खिलाफ सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वस्थ बच्चे ही देश का मजबूत भविष्य हैं। अभियान के तहत जिले के 9,000 कुपोषित बच्चों को 6 माह तक सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे। इन लड्डुओं का निर्माण महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन करने की अपील की है। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरबा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के नेउरगांव खुर्द में भारत माता की प्रतिमा और शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 का परिणाम घोषित कर दिया।

0: गया है। यह परीक्षा 2 मई को आयोजित की गई थी। विद्यार्थी अपना परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित आवास मेला के लक्की ड्रॉ विजेताओं की घोषणा 22 जून को की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सक्ती जिले के ग्राम सपोस में बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री कर रहे एक कृषि केंद्र में छापा मारकर करीब 800 बोरी उर्वरकों की बिक्री पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सूरजपुर जिले में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बैकोना में बीती रात एक मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के नगर पालिका अकलतरा में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। 4 घंटे तक चला प्रदर्शन अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्यपाल रायपुर और मुख्यमंत्री सरगुजा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एनटीए द्वारा कल छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से अभनपुर में शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको आज के शेष आकर्षण और कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं।

अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। साथ ही सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 8:00, और कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। अखिल भारतीय कार्यक्रम फिल्म पत्रिका चित्र भारती आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम ठुमरी आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10 बजे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के कुछ मुख्य आकर्षण। आइए आपको कल के प्रातःकालीन सभा के मुख्य आकर्षणों से अवगत कराएं।

कल प्रातः 6:05 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और कार्यक्रम प्रकाश किरण आप सुन सकेंगे प्रातः 6:30 पर। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथ ही रामचरितमानस के गायन का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:35 पर, जिसमें मुख्य गायन स्वर होगा श्रीकांत पारगावनकर का और रविंद्र साठे का। संगीत निर्देशन होगा सतीश भाटिया का। 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती की बात, सामयिक सुझाव का विषय होगा पशुओं में निमोनिया रोग, और कार्यक्रम गुंजे जंगल आप सुन सकेंगे कल प्रातः के ठीक 7:00। सुगम संगीत का कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 7:15 पर, और जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे कल प्रातः 7:30 पर।

बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुन सकेंगे कल सुबह तय समय 9 बजे, और कार्यक्रम किस्सा कहानी का आनंद आप ले सकेंगे कल सुबह 8:30 पर, जिसमें शीर्षक होगा अनबुझ कहानी। संकलन एवं लेखन होगा श्री राम प्यारे रसिक का, संयोजक होंगे नागेंद्र दुबे, प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभना साहू, प्रतिभागी होंगे मृदुल गुप्ता, शोभना साहू, कमलेश सिंह। और कल सुबह 8:45 पर आप सुन सकेंगे सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ। कल सुबह के ठीक 10 बजे आप सुन सकेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। श्रोताओं, ये थे हमारे कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए फिर से सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं चंदन दास के स्वर और संगीत निर्देशन में ये गजल। सब दृश्य है पायम साईदी की।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला गजल, चंदन दास के स्वर में। संगीत निर्देशन है चंदन दास जयदेव कुमार का, रचनाकार हैं रामल सेगल।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए पे से ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम भजन भैया।
1: राम राम बिरजू भैया।
0: और बताइए भाई, क्या हाल चाल है?
1: देखिए हाल चाल तो सुघरे सुघर, और रोरे कति बताइए भाई।
0: बढ़िया ना है भजन भैया, लेकिन आज एगो तो बड़ा खुशी कर दिन एक ऐसा है कि भाई आज जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तो भाई 2000 राशि 28 तो यही खुशी है कि भाई तनिक काम आ जाते, खेती बाड़ी कर समय है।
1: तो बड़ा सुघर देखी भाई, अभी ये जो रौरे कहा थी ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करिए कही, तो ये 23वां किस्त जारी हुई।
0: अच्छा।
1: और हमर जो प्रधानमंत्री

0: जो है कर उद्घाटन करिन और कहे लेकिन कहाँ करिन तो हूँ बता दो।
1: हो हो
0: पश्चिम बंगाल कर हुगली जिला कर तारकेश्वरपुर गांव में।
1: हो
0: और देखिए भाई हर योजना जो है बड़ा सुगर योजना रूरे के हैं कि भाई पैसा आ जाए तो भाई अपने अपन खेती किसानी करती बर एक
1: सहायता हो जाती है।
0: और इसमें पूरा देश भर में कहीं नहीं तो 9,44,00,000 ले बगरा किसान परिवार मनक बैंक खाता में सीधा सीधा यहाँ पहुंची सा है।
1: अच्छा
0: डायरेक्ट जिला बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं।
1: हाँ डीबीटी। तो ये तो बड़ा खुशी कर बात है। और भाई ये योजना के अंतर्गत जो हमारे किसान भाई हैं बड़ा उनके सहायता भी हो जाते हैं, विशेषकर जो अभी खेती कर समय है तो देखिए खाद बीज हो गई है ना, तो ऐसे में बड़ा सहायता हो जाते है। और जो 23वां किस्त जारी हुई से तो भाई बड़ा बढ़िया दिन रोरे पूछे ना कि कैसे हैं, तो बड़ा बढ़िया दिन आया बरबर। तो
0: देखिए भाई रुपया पैसा मन आया जाए खाता में ना तो मन हर जो है राव खुशी हो जाए।
1: हाँ
0: रोरे खाता में
1: नहीं एक हिम्मत मिले ना भाई कि भाई ये जातला में खरीद

0: खेती कर समय है, तो देखिए खाद बीज हो गई है ना, तो ऐसे में बड़ा सहायता हो जाते है। और जो 23वां किस्त जारी हुई से तो भाई बड़ा बढ़िया दिन, पूछे ना कि कैसे हैं, तो बड़ा बढ़िया दिन आया हमर बर। तो
1: देखिए भाई रुपया पैसा मन आ जाए खाता में ना, तो मन हर जो है राव खुशी हो जाए।
0: हाँ
1: खाता में
0: नहीं एगो हिम्मत मिले ना भाई कि भाई ये जातला मैं खरीद ले हूं।
1: अब देखिए अभी खेती किसानी कर दिन, बीज कर व्यवस्था करना है, खाद कर व्यवस्था करना है, नहीं कई ऐसा हमारे भाई नागर का है जोताई कोड़ाई है कर व्यवस्था करना है। तो एक तरह से सरकार बड़ा सुघर यदि योजना लागू करी सा है। और देखिए साल में 6,000 रुपया कर सहायता कम नहीं है, नहीं
0: बहुत
1: और 3 समान किस्त में देता है।
0: तो देखिए मैं तो कहता हूँ कि ये तरह के सहायता तो करते है सरकार, और कई तरह कर योजना है जेकर हमन फायदा उठा सकत हन। और देखिए हमन बात करी आज कर दिन बात करी, तो देखी आज जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन कर बात यदि हमन करी, तो देखी भाई मधुमक्खी पालन भी एगो कह ली कि बढ़िया साधन है आय कमाए कर,
1: ये कही कि मीठ मीठ कमाई हवे।
0: हाँ
1: नहीं काबर की भाई जो किसान भैया बहनी मन खेती किसानी के अलावा अगर मधुमक्खी पालन ला करते हैं तो निश्चित रूप से आय कर एक बढ़िया ये साधन बन जाते
0: हैं।
1: और सबसे बड़ बात है कि ये में कम लागत और कम जगह में शुरू करल जा सकता है। और देखिए भाई शहद कर संग संग इमें अगर कही तो मोम पराग कण जैसन भाई उत्पाद ला भी हमन बनाए के
0: ऊपर से बेच सकत
1: है। बेच सकत है
0: बिल्कुल, और बढ़िया देखिए फसल खातिर भी बढ़िया है, भजन भी है कि भाई हमारे फसल का परागण खातिर भी बढ़िया ना है। और सबले बढ़िया बात है कि जैसे रोरे बताए कि इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगे भाई, 10 पेटी से भी हम शुरुआत करत हन तो भाई मान ली कि 50,000-60,000 और ओकर से कह ली कि भाई और हम बढ़ा सकत हन, और जो है थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके यदि हमन व्यवसाय लाए करी तो देखिए में ज्यादा मेहनत भी नहीं है, एक घर के महिला मन भी कर सकता है पहला सीख के नहीं, और इसमें ज्यादा मशीन कर भी जरूरत नहीं है, खाली पेटी कर देर मधुरस निकाले कर मशीन छोटा छोटा।
1: और देखिए अगर हमारे आसपास में जैसे हमन खेत में सरसों लगाए हैं, सूरजमुखी लगाए हैं, लीची आम मन है, फूल वाला जो फसल है वो आसपास से बड़ा सुघर जो है मधुमक्खी पालन करके बेहतर जो है यदि लाभ ला कमाए सकते।
0: बिल्कुल, और जंगल में तो देखिए साल भर कुछ न कुछ फूलते फलते नहीं, तो ऐसे में देखिए जो हमारे किसान भाई यदि मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण लेके मैं कर यदि करे ना तो देखिए मैं खेती के साथ साथ एक अतिरिक्त आय कर साधन बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सुघर केहन, तो सरकार के तिले भी लोग देखिए कई ठे योजना मन चलता है।
0: हाँ।
1: मधुमक्खी पालन ला भाई कैसे करी ओकर प्रशिक्षण देहे बर ओकर अनुदान घलू का है बिरजू भैया, तकनीकी जो सहायता उपलब्ध कराल जाते तो एकर भाई उचित प्रशिक्षण लेके अच्छा जो है हमन उचित प्रबंधन समय कर देखभाल और बाजार कर जानकारी रख के मधुपालन हमन कर सकत हन। और मैं तो यही कहूँ कि हमारे किसान अवरौरे भी कहन ना कि भाई हमन अतिरिक्त आय जो है कमा सकत हन, तो मधुपालन ला हमन अपनाई और शहद कर साथ जो है मीठा मीठा समृद्धि पाई।
0: तो देखिए जो हमारे किसान भाई हैं ये जो मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं, देखिए मैं ज्यादा औजार रहल भी नहीं, और देखिए एक तो मधुमक्खी बकर बक्सा है ना, और मधुमक्खी बक्सा कर बात करी तो जहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं वहां से भी मिल जाते या फिर खुद बनवा भी सकत है। तो ये मधुमक्खी कर बक्सा बनवा लें, और जहाँ जो फसल है विशेषकर जो ठंड में फूलदार फसल है वो तो है ही चाहे, और नहीं तो फिर जंगल है और कभी कभी देखिए बीच में जो है फूल नहीं आते तो घनी जो है भाई घर से जो चीनी उनी बना कर जो रसला खवात रहते ताकि जो हमारे मधुमक्खी हैं जिंदा रहे। तो कहे कर मतलब है कि भाई देखिए पर्यावरण का तीन भी बड़ा बढ़िया ना है, तो जो हमारे किसान भाई मान ले कि भाई थोड़ा भी खेती है या फिर ज़्यादा भी खेती है तो अपन घर के आसपास भी कर सक पेटी लगा सकते हैं, या फिर मान ले कि भाई उनका गांव में फूल नहीं है तो जहाँ पे फूल वाला फसल है वहाँ भी अपन गाड़ी से ले जाके बक्साला रख सकते हैं, और वहाँ से जो मधुमक्खी मन जो है रस जो है फूल के लेके और फिर जो मधुरस बनाते तो देखिए इमें तरह तरह के देखिए इमें कह ली कि सेंट भी आते मान ली कि भी सरसों फसल के पास यदि लगाएं तो सरसों शहद में सरसों का सुगंध आते हैं, तो इमें अलग अलग तरह के या फिर अभी देखिए गर्मी का अभी मौसम रही लीची आम ये सब में तो ये सब तो देखिए साल भर कुछ न कुछ फूलते फालते रहते हैं। तो किसान भाई जो है एकर जो है प्रशिक्षण ले हैं, और जो है देखिए इमें मैं कहता हूँ कि भाई जो विशेष करे में देखिए मधुमक्खी कर जो बात रहते हैं तो देखिए एक तो कह ली 4 तरह के मधुमक्खी है ना, तो

0: चारों मधुमक्खी चार तरह के जो हैं, तो विशेषकर जो भारतीय मधुमक्खी है और इटालियन मधुमक्खी है, ये दो तरह के जो मधुमक्खी है ओला यदि पालत हैं तो इमन बढ़ियन बनाते हैं, बढ़ियन मधुरस बनाते हैं, है ना। और कह ली कि साल भर में 30 से 40 किलो मधुरस जो है प्राप्त हो जाते हैं एक पेटी से।
1: बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा कहें रौरे। और देखिए बाजार भाव हल बढ़िया ना है बिल्कुल भैया, काबर की देखत हन कि बाजार में आजकल एतेक सुघर मतलब ओकर व्यवस्था है कि कोनो जगह भी तू रौरे जैसे अगर वो लाने ना बाजार में ले तो लूट पड़ते। आजकल भाई दवाई कर घलो काम करे नहीं,
0: बिल्कुल नहीं, सबसे
1: बढ़िया बर घलो बढ़िया
0: सबसे बढ़िया ना भजन भैया मुख्य लगते है कि देखिए विशुद्ध जैविक चीज है, कोई मिलावट नहीं।
1: हां
0: नहीं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब जन भाई लेना चाहते हैं, काबर की शुद्ध रथ है, कोई मिलावट नहीं रथ है, तो मिलावट से भी मतलब किसान भाई जो है एकदम यदि शुद्ध और जैविक के नाम पे भी बेचता है तो मांग एक बहुत बड़ा है।
1: ये कहे कि कम लागत में यदि बगरा लाभ भेटा ही और रोजगार कर अवसर गल भेटा ही, काबर के हमारे जो ग्रामीण पढ़ा लिखल युवा मन है, जो महिला मन है, जो किसान भैया बहनी मन है, अगर ये मधुमक्खी पालन लग करके अपन स्वरोजगार कर दिशा में जो है आगे बढ़ सकता है और एक अच्छा साधन के रूप में हमन देखत हन। रौरे कहें कि भाई पर्यावरण संरक्षण पर भी योगदान देता है, काबर की जो मधुमक्खी जैव विविधता बनाए रखे पर जो ला कथन बनी पौध कर प्रजनन में एक तरह से बहुत बढ़िया भूमिका ला निभाते
0: हो,
1: और कृषि कर साथ कही नहीं भाई हमन मधुमक्खी पालन करत हन तो निश्चित कही कि हमार किसान भैया बहनी मन कर आय जो है दुगुना हो ही।
0: बिल्कुल, और देखिए जब हमन बात करत हन कि भाई पर्यावरण सुरक्षा के भी बात करत हन हमन या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी के भी बात करत हन, तो देखिए एमे बड़ा सहयोगी है जो मधुमक्खी पालन है ना, काबर की भाई देखिए एमे हमन जो है रासायनिक चीज के प्रयोग नहीं करते, न रासायनिक दवा न रासायनिक खातु, ये बढ़ियन जो है बढ़ियन व्यवसाय है। और जब हम बात करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के, तो भाई सरकार तो या फिर पूरा किसान आजकल समझता है कि जैविक चीज के मांग धीरे धीरे बढ़ता है, तो हमारे किसान भाई मन भी अब समझता है कि भाई कौन तरीका से जो जैविक खेती की तरफ हम आगू बढ़ी और वो में देखी कि भाई चाहे वो कंपोस्ट होगी, केंचुआ होगी, हरा खाद होगी, ये तरह के खाद की अब ज़्यादा मांग भी है और किसान भाई मन तैयार भी करता है और कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भी करते हैं। और देखी जो हम रासायनिक खातु डालते रहें तो देखी हमारे खेत भी बिगड़िस, पर्यावरण भी बिगड़िस, तो देखी खेत सुरक्षा अभियान भी चलाता है, तो खेत सुरक्षा अभियान में भाई यही जो रहा है कि हम जो रासायनिक खातु है और रासायनिक दवा है से थोड़ा ओकर कम प्रयोग करी, जगह से हमारे पर्यावरण हमारे माटी भी सुरक्षित रहे, हमारे स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे।
1: तो बिरजू भैया देखिए रौरे गोइट करते करते हमर बेरा होइ चली सा है किसानवाड़ी कार्यक्रम में, तो चलल जाए।
0: हाँ।

0: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू किसान भाई मन कर स्वागत है। भजन भैया राव राव कर स्वागत है। और आज कर जो हमारे कार्यक्रम है किसान वाणी ओकर में देखिए आज हमन गुठियावो बकरी पालन के बारे में और प्रधानमंत्री प्रणाम योजना भी आया है और साथ में खेत बचाओ अभियान के भी हमन चर्चा करबो। कुछ गीत भी है और जो है हमारे जो कार्यक्रम रथ है नकदी फसल कर आज जो हुआ है और कुछ हमारे जो किसान भाई मन चिट्ठी लिखी है कर जवाब दिल जाए। तो देखिए मैं जैसे हमन अभी एक कार्यक्रम से पहले गुठियात भी रहे कि भाई ऐसा कोनो खेती से जुड़ल जो व्यवसाय है जेकर में ज्यादा पैसा नहीं लगे लेकिन मुनाफा बढ़ियन हो
3: बढ़ियन हो। हाँ,
2: तो देखिए हमन गुठियात भी रहे कि चाहे वो बकरी पालन के बात हो चाहे मधुमक्खी पालन के बात हो तो मैं देखिए ज्यादा पैसा लगे नहीं। और विशेषकर बकरी पालन के बात करी भजन भैया तो देखिए एला तो भाई गरीब कर गाय कथे नहीं हमें ज्यादा पैसा नहीं लगे ये व्यवसाय के कोई भी शुरू कर सकत है और ज्यादा जगह भी नहीं लगे। तो देखिए भाई छोटा घरे 15x10 कर मान ली तो उनमें भी 8-10 बकरी अपन पाल सकत है ना। और कह ली कि भाई बढ़िया नस्ल के बकरी पालत हैं तो बढ़िया नस्ल के बकरा भी हुई और ज्यादा वजन हुई तो ज्यादा वजन हुई तो ज्यादा पैसा भेटा ही। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई एगो और खड़ा चेक का है
3: एकदम सुगर केन रो खड़ा चेक के ही बढ़िया लेकिन भंजाई और घरे पैसा बाकी देखी नहीं। अगर बकरी पालन

0: रौरे कहत हन तो यार हमर महिला सशक्तिकरण पर बहुत अच्छा
1: बहुत
0: कदम
1: हो
0: काबर की जो भी हमर महिला दीदी मन है ना बहिन मन है उमन कर आय बढ़ाए में और एक तरह से उमन ला आत्मनिर्भर बनाए बर के तो बहुत अच्छा ये माध्यम है और सबसे बात कहन ने कि भाई अगर छोटे से शुरुआत कर सकत कम पूंजी में एक गोट दी गोट तीन गोट बकरी कम जगह घलो घेरेल और अच्छा प्रबंधन कर के कहीं नहीं महिला मन कर अच्छा लेखन जो है कर पालन करत है तो कर फायदा तो भेटा ही
1: बिल्कुल। और देखिए स्व सहायता समूह जो है वो भी बकरी पालन करता है और जो है घर घर भी करता है तो ये बड़ा बढ़िया ना है। और देखिए चराए पर भी ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ते और मैं कहता हूँ कि भाई जैसे बकरी पालन करत हन तो हमन देसी बकरी के पालन तो करवे करते हैं लेकिन एक साथ साथ तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बकरा जो है ज्यादा रोट ज्यादा वजन के हो तो जो कह ली कि भाई बहुत सारा जो किस्म है मान ली बरबरिया है ना सुजत नस्ल है बंगाल टाइगर है तो ये तरह के जो नस्ल है उकर एक बकरा हम ले सकत हन और देखी बकरा बढ़िया नस्ल के बकरा और देखी पास के जो पशुधन कहली की कार्यालय है वहां से संपर्क कर लें तो वहां देखी कुछ पैसा लेके आधा दाम कर उमे जो है बकरा मंगवाए देते हैं बाहर ले तो बढ़िया नस्ल के बकरा मंगवाए देते हैं तो भाई उकर जो है कह कर मतलब है कि भाई मीटिंग के द्वारा जो है अब बढ़िया नस्ल के बकरा यदि पैसा पैदा हुई तो बढ़िया लाभ भी भेटा ही।
0: और देखिए लाभ कर संग संग अगर बात कही नहीं तो इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी कैसन कही तो भाई देख जो भी बकरी कर दूध है बच्चा है मांस कर बिक्री हुई तो उकर से ए दे भाई रौरे कहन ना कि ये दे चेक खड़ा चेक वही बात है कि आय जो है हमेशा रौरे कर घरे पैसा आ जात रहा और महिला मन पर परिवार कर आय में जो है एक तरह से भागीदारी हुई ओमन ला भाई सहायता करी नहीं और रोजगार कर अवसर घलो बाढ़ी घर में रही के बकरी पालन करत है तो उमन ला जो महिला मन है तिमन कर स्वरोजगार मिली और जो हमार खास करके गांव गवई कर बात में करी तो निश्चित रूप से एक तरह से रोजगार सृजन हुई है कि नहीं और निर्णय लेकर क्षमता में घलो बढ़वार हुई
1: बढ़िया गुटियान की भाई जो हमार महिला मन है देखिए आर्थिक रूप से सशक्त हो के बाद देखिए भाई एक विश्वास पैदा होते और वो जो विश्वास है देखिए सम्मान भी बढ़ाते और सम्मान हो के वजह से देखिए चाहे वो पारिवारिक फैसला हो चाहे ग्राम सभा कर बात हो तो बहन मन में जब आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जब पैदा होते तो अपन बात ला जो है समाज के सामने रखते हैं तो देखिए बड़ा जरूरी भी है नेतृत्व भी बड़ा जरूरी है तो ये जो छोटा सा काम है बकरी पालन एक से देखिए आत्मनिर्भर भी बनाता है आत्मसम्मान भी बढ़ाता है आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और जो निर्णय लेकर बात आए चाहे वो समाज कर में निर्णय कर बात हो चाहे परिवार में निर्णय कर बात हो उनकर भागीदारी जब बढ़ते ना तो एकस में जो कहल रूरे बात करते हैं सशक्तिकरण कर ओहर बढ़ जाते तो ये बड़ा जरूरी है कि ये जो बकरी पालन कर व्यवसाय है हमर बहनी मन जो है ये व्यवसाय के शुरू करके जो है अपन पैर पे खड़ा हो सकत है और अपन जो है आत्मविश्वास ला बढ़ा सकते
0: रौरे किसारा है कि भाई बकरी पालन केवल आय कर साधन नहीं है बल्कि हमर जो गाँव कर महिला मन है उमन ला पारिवारिक सामाजिक आर्थिक और आत्मनिर्भर विकास करे गुट बढ़िया माध्यम है
1: बिल्कुल
0: है कि नहीं तो एकर बर देखी उचित प्रशिक्षण भी देहल जाते पशु स्वास्थ्य प्रबंधन कतिले सरकारी योजना कर सहयोग से भी ये व्यवसाय ला हमर महिला दीदी मन कर सकत है
1: बिल्कुल। तो भजन भैया देखिए ये तो हम बकरी पालन से जो हमारे ग्रामीण किसान भाई हैं कैसे बहनी मन सशक्त बने देखिए बहुत सारा योजना जो हमारे किसान भाई मन जानते हैं भी लेकिन हम चर्चा करत रहन कि हमारे जो किसान भाई वाला जाने और उसका लाभ भी
0: हो
1: तो इसने देखिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है और देखिए जब हम प्रधानमंत्री प्रणाम योजना कर बात करते हैं तो एक सीधा मतलब है कि जो रासायनिक उर्वरक है ओकर ऊपर निर्भरता कम करे खातिर ये योजना चलाल गई
0: बिल्कुल भाई जो रासायनिक उर्वरक है तो ओला कम से कम जो है उपयोग करी और जैविक खेती कति लौटी
1: हो
0: संगे संगे देखिए अगर जो माटी कर उर्वरता है ये हर दिनों दिन घटत जाता है तो ऐसा में अगर हम जैविक खेती करब तो जो मिट्टी कर उर्वरता क्षमता है स्वास्थ्य है सुधर ही और पर्यावरण संरक्षण कर दिशा में घलो के हर फायदा कर ही और किसान मन कर भाई देखिए जो भी लाभ मिले वाला है इमें देखिए उर्वरक कर खर्च में भी कमी आई
1: बिल्कुल
0: माटी कर जो गुणवत्ता है उमें भी सुधार हुई फसल कर जो दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता जो लगत है बढ़वार जिला है ओहर भी बढ़ी और पर्यावरण में प्रदूषण कर कमी भी हो ही
1: बिल्कुल। और एक से जुड़ल बात है कि हमारे जो किसान भाई हैं अपन मिट्टी के जांच जरूर करा लें एक से भाई उनकर जो लागत है कम हो ही ऐसे तो भाई हमन खाली बस आंख ला मूंद के और खातुला मारत रहा था, तो हमला

0: तो पता नहीं है कि भाई हमारे खेत में क्या स्थिति है, कौन हाँ, फसल हाँ. में कितना देना है. भाई हमन तो देखा था इनके, हमारे जो बाप दादा जितना मारा था इन बोरिया में बैठ के, कि भाई हाँ नहीं ठीक है, चाहे वो मन ठीक है मारा. मैं कहता हूँ कि भाई अब आधुनिक समय है तो थोड़ा सा आधुनिकता अपनाना पड़ी ना
1: भाई. अब देखिए ओकर पर सरकार देखिए भाई कार्ड घल बनवाई चाहे मृदा कार्ड, ओकर हिसाब से भाई हमारे खेत में क्या क्या कमी है, क्या व्यवस्था हमन कर सकते हैं. और देखिए अभी अभियान भी चलता है खेत बचाओ अभियान. देखिए खेत बचाओ अभियान कहले भाई कर हमर माटी जो है उकर उर्वरता क्षमता बढ़े, पानी कर जो कमी है, पानी कर संसाधन कर दिशा में कर फायदा कैसे होए, और पर्यावरण हमर कैसे संतुलित रहे, टिकाऊ खेती ला कैसे बढ़ावा देहल जा सके, एकर बर जो है ये खेत बचाओ अभियान हर चलता है. और एकर उद्देश्य कही ना तो जो हमर माटी कर कटाव है, जो बहाव है, उकर क्षरण ला रोकना है,
0: मिट्टी संरक्षण
1: हो. और जैसे हमन गोट बात करता हन कि उर्वरता क्षमता ला बनाए रहे, हमर जो भाई जिस तरह से रासायनिक खेती करके अंधाधुन खेती करें तो उनमें हमर जो क्षमता रही माटी कर वो हर कमजोर होगी जाए, तो ला हमन ला फिर से बढ़ाना है. और जो जल संरक्षण जिला हमन कथन पानी बचाना, खास करके बरखा बाएगी से है, बरखा पानी ला भी हमन संरक्षण.
0: बिल्कुल, जब पानी संरक्षण की बात करते हैं तो भाई ड्रिप पद्धति और ये सब पद्धति भी अपनाने जरूरी है.
1: तो यही कहब कि भाई मृदा परीक्षण कराई रहूरे अभी कहते च रहे हैं. तो एकर यही है कि मृदा परीक्षण हमन ला कराना है, संगे संगे भाई जो गर्मी समय में गहरी जुताई तो करिए लेना है किसान भैया बहनी में, और जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग ला करना है
0: ज्यादा से ज्यादा.
1: और खास करके जैसे अभी बरखा पानी आई तो पानी का संचयन करना जरूरी है, मेड़बंदी हो, वृक्षारोपण हो, पौधा लगाना है. ये छोटा छोटा बात देखिए बहुत आगे चल के हमन ला फायदा ला दे.
0: बिल्कुल भजन भैया, मैं कहता हूँ भाई कि देखिए गांव हमरे चाहे, जंगल हमरे चाहे, ये जो डबरी नरवा ये सब हमरे से तो आए हैं, तो जिम्मेदारी भी हमरे से बनता है कि भाई खेत के से लेके पानी तक पेड़ तक सब जो पर्यावरण कर सारा जिम्मेदारी हमरे चाहे, कहे कि भी हमर जीवन यहाँ गुजरना है ना, तो हमर जब जीवन गुजरी तो भाई हमरे जिम्मेदारी बनता है. दूसर जन तो नहीं आके ला संवारे,
1: नहीं संवारे
0: कि भाई मट्टियों ला बचाना है, जंगलों ला बचाना है, पानी, तो ये सब के बारे में हमें सोचना पड़ी. और कल की भाई सरकार तो भाई सहायता देता है, रास्ता दिखाता है, तो लेकिन काम तो हम ही मतलब करना पड़ेगा ना पड़ी, हाँ. कि भाई कौन तरह से हम अपन पानी बचाई, खेत बचाई है ना. आखिर तो देखा था कि भाई जो हम हाइब्रिड लगाता ना अंधाधुंध मारा था रासायनिक खाद और रासायनिक दवा, तो उधर से देखिए हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब होता है, और जल प्रदूषित भी होता है, जल भी कम होता है धीरे धीरे. तो ये सब जातला समझना है, और कहली कि भाई ये व्यक्तिगत नहीं, सामुदायिक जिम्मेदारी भी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, और कहली पूरा समाज देश कर जिम्मेदारी है.
1: तो बिरजु भैया देखिए रउरे एतेक सुघर बतायन, अभी बकरी पालन कर गोट करें हमन प्रधानमंत्री प्रणाम योजना कर भी बढ़िया गोट बात हुई, खेत बचाओ अभियान जो चलता है ओकरो विषय में रउरे बहुत अच्छा कहन. बाकी मैं कहते रहें कि देखिए भाई गीत गोविंद अगर नहीं तो चटिक मन हर जो है लागे
0: उदास
1: हो जाए. और रउरे देखिए भोजपुरी बड़ा सुघर पसंद करती, तो ओकरे भर में लाने हैं बढ़िया गीत जिला गई ना है मोहम्मद खलील और उनकर संहिता मन, तो लगी ला सुनत है.
0: अरे कहिया ल मिला.

0: हाँ तो भजन भैया देखिए भाई गीत ला सुनिन मैं कत रहे कुछ संदेशों ला सुन लेते हैं की
1: तो लगी संदेश ला सुन लेते
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
3: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो भजन भैया, भाई देखिए संदेश मल्ला तो सुने
7: हो,
6: और लेकिन आज जो हमार कार्यक्रम है नकदी फसल कर, ओमे देखिए रोरे गोट बात करे हन हमार जो किसान हैं पारसनाथ भगत जी। तो भाई कौन कस बात करे हन और कैसे खेती करता है, खरीफ फसल के बारे में रोरे कैसे तैयारी करता है, तो गोट बात हुई से तो इला सुनल जाए।
8: चलिए

0: आज घूमत घूमत में आया हूँ बड़े दमालिकर पाक जाम भगत पारा। तो चली उनकर जग भेंट करी, उनकर जग गोइट बात करी और जानी भाई कैसे खेती किसानी करत हैं। तो सबसे पहले तो राउर अपन नाम ल बताई।
1: जय जोहार।
0: जय जोहार।
1: हमार नाम पारसनाथ भगत है। हमारे गांव पाकजाम भगत पारा है।
0: पारस भैया घर में कौन कौन है?
1: घर में हमन हन तीन परिवार हन। और मोर भाई मन है, ओमन चार परिवार हैं। और एक भाई है शादी नहीं करे हन। और मोर माता जी है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: मने एक कही तो
1: एक ही में है।
0: हाँ हाँ बड़ा परिवार है
1: बड़ा
0: नहीं।
1: परिवार है। हाँ,
0: और बड़ा परिवार में रह कर कुछ मजा ही कुछ दूसर है नहीं।
1: हाँ बता रहे।
0: मिलजुल के खुशी बांटे कर बातचीत जब होते अच्छा लगेल।
1: अच्छा।
0: और मिलजुल के हमन जब आगे बढ़ती खेती किसानी करती और जो है काम बूता ल करती तो मन हर जो है अपने आप हरियर हो जाते हैं, उन्नति घलक
1: हाँ,
0: मिलते।
1: वो तो
0: तो अभी खेती किसानी कर गोइट करी, बरखा जब आ जाए जेला हमन कही कि खरीफ फसल,
1: खरीफ फसल है।
0: खरीफ फसल में का का खेती किसानी करे कर योजना ल बनाए ही?
1: तो अभी खरीफ फसल में अभी हमन खेत के जोताई मन चलत है। और
0: हाँ
1: धान मन के अभी सूखा बुने की तैयारी चलत है हमार।
0: अच्छा, अभी कर समय बड़ा सुगर है और धरती हर तपिस है नहीं,
1: हाँ,
0: और ऐसा में ढेला मन ला पाच धारण की।
1: तो अभी तेंदू पत्ता खरीदत रहे। अभी मोर आज भर्ती चलत रहे,
0: अच्छा
1: ऊपर चलते अभी बंद कर दे। अब आज भर्ती होके कंप्लीट है। एक दो दिन की खरीदी आज पलटी करवाई। नांगर
0: अच्छा
1: जोताई चलत है अभी। और ढीला मन पता ही
0: तो
1: अभी।
0: तेंदू पत्ता कर गोइट कर लीजिए। ठीक, तेंदू पत्ता ये आसपास में ढेरे है।
1: हाँ, अभी मैं खरीदे हूँ।
0: अच्छा,
1: 4 दिन की खरीदी हुई है।
0: लेह पर आते हैं कोनो की?
1: अभी भर्ती वाला मनाइन है भरे महाराष्ट्र से। गोंदिया वाला मैंने गेंग है जो कि उल्टाई पलटाई भर्ती के काम करते।
0: हाँ,
1: और उसके बाद में परिवहन जो हो ही तो समय अभी गाड़ी आई बोला
0: हाँ
1: गाड़ी में परिवहन करके भेज देव। हमने वो रिकॉर्ड बना के हम
0: अच्छा
1: टीडीपी काट के देव हम। वो
0: हाँ।
1: फिर लेके जाए गाड़ी पे।
0: किसान भैया बहनी हो, तेंदू पत्ता भी एकदम आय कर एक बहुत अच्छा साधन है। जब गांव कर पहाड़ कर किनारे गांव हो, आसपास जंगल हो, तो वहां कर एक आय कर साधन हो जाते, चाहे हर्रा हो, चाहे बहरा हो, चाहे मूंगा हो, नहीं तो यहाँ तेंदू पत्ता बढ़िया होता है। और रौरे जो है तेंदू पत्ता ला सकेल लाना थे।
1: आमदनी के साधन है।
0: हाँ
1: अच्छा,
0: हो
1: किसान मन के अच्छा साधन है ये तेंदू पत्ता के। पैसा ऐसा है भैया ना कि अभी जो तेंदू पत्ता सकेल लाने हैं, खरीदे हैं हमन, एकर पेमेंट ऐसा समय में होल कि किसान भाई मन बर धान बीज एन तेन जो भी है ना उमर एकदम सही समय में एकर
0: फायदा
1: भुगतान
0: हर
1: मिल जाए।
0: भेटायल।
1: फायदा भेटा जाए एकर। भैया अभी भुगतान भी अच्छा रेट बढ़ गए है। अभी 5 रुपया 50 पैसा है।
0: अच्छा
1: मतलब कि अगर 1,000 तोड़ीस
0: हाँ।
1: तो 5,500 पैसा

0: थे।
1: अच्छा
0: तो एक हिसाब से कहना चाहिए हमारे ग्रामीण आदमी मन ला अच्छा आमदनी के साधन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कहे न, तेंदुपत्ता कर अभी कर समय भी चलता है, तोड़ भी लाने ही रहे हो हमेशा जो है, इसमें तो बड़ मेहनत लागत होगी।
0: हाँ मेहनत तो लगते भैया। हाँ आपका संग्राहक मन पत्ता ला घाम घाम में तोड़ के लानते, लाने के बाद घर में ओला गिनाई गिनते, मतलब कि 25-25 के करे, मतलब कि 50 के बंडल रहते, आरो पार बंडल ला पलट के बांधना पड़ते, 25-25 के रहते तो 50 के एक बंडल पत्ता रहते।
1: अच्छा
0: वहाँ किसान मन ला मतलब कि 5 रुपया के दर पे मिलते, 5 रुपया 50 पैसा एक बंडल में मिलते।
1: अच्छा
0: मन
1: तो पैसा रुपया तुरंत देते कि?
0: तुरंत मनी मिले ले, वो हर जैसे कि नरेगा में जैसे कि ऑनलाइन होते पंजीयन, वही टाइप से तेंदुपत्ता में भी पंजीयन हुए है, और वही पंजीयन में ऑनलाइन डायरेक्ट हमन यही जैसे पेमेंट डाल देती, ऑनलाइन मोबाइल में ऑनलाइन एंट्री मार देता, आईडी पासवर्ड हमारे बने हैं,
1: अच्छा
0: बाद में पैसा डायरेक्ट एंट्री जैसे मारे हमन ना किसान में दूसरा दिन में पेमेंट हो जाते तुरंत। अभी हम लिखा पड़ा हिसाब किताब बना था, वो बनाए के बाद तुरंत पेमेंट हो जाएगी।
1: तो आए वाला समय में जैसे कहते कि खरीफ फसल में धान लगा, और ये गांव में धान के अलावा खरीफ फसल में क्या क्या लगाते?
0: धान के अलावा भैया हमारे जगह ना जगह जमीन के हिसाब से दूसरा खेती नहीं करते, धाने और रहर हर बोलते हैं, तो रहर और उर्दा वगैरह।
1: बादाम उदाम?
0: बादाम में जगह नहीं लगाए
1: भैया। दलहनी फसल?
0: दलहनी फसल रहर कुर्थी और उर्दा।
1: तो राउर क्या क्या लगा आपते बता?
0: अभी हमन रहर लगाना है हमन के,
1: बरखा गिरी
0: बरखा गिरी कर बाद में, और अभी धान सूखा बुने के रहा मन
1: कहना भी रहर लगा ने? हाँ। तो रहर लगाए में कौन तरह से तैयारी करना पड़ेल, कै बाग खेती
0: तो अभी रहर लगा वहाँ खेत ला पहले जोताई कर ले बढ़िया से, घास न मत रहे, और वहाँ करके जैसे कि दीमक उमक कटत है तो वहाँ कीटनाशक औषधि बुने के बाद वहाँ मार देना पड़ता है, ताकि वो दीमक के मत खाए, ओकर बाद में बुन देना है ओकर बाद।
1: अच्छा रहर कर बीज राउर कहाँ ले व्यवस्था करो?
0: बीज हमारे घर ही में है, पुराना बीज है, मतलब कि पर साल के,
1: पर साल का वही ले लगा देना है,
0: लगा देना है।
1: खेत कर तैयारी कर गोट करी तो कै बह जोते पड़े?
0: तो कम से कम 3-4 बह तो जोतना पड़े।
1: कौन खेत में होते?
0: डांड भुइया में। अब खेत में जैसे कि पानी रुक जाते तो वहाँ रहर नहीं होते।
1: हाँ डांड भुइया में बढ़िया होते, मतलब 2-3 बह खेत ला जोत।
0: हाँ फिर ओला बुआई करना है पड़े, लोकर पाटा में पटल देना पड़े, उगेल तो अगर घास होते तो घास के निकाई करना पड़े,
1: घास अगर निकलते तो ओला खरपतवार जिला नहीं, बोला निकाल देना चाहिए जितना जल्दी हो
0: ताकि
1: सके,
0: मतलब कि अच्छा से हवा हुआ लगे तो बढ़िया बढ़े।
1: पारस भैया इसमें अगर खाद पानी कर गोट करी तो खाद कर खास करके कहाँ का खाद रे देती?
0: तो खाद हमारे जगह डीएपी पोटास
1: खाद कर व्यवस्था गांव में हो जाते
0: हैं, सेठ में लानते तो खरीद लेती है, गाँव में घुमाए लानते खाद के कमी बेसी नहीं होते, पूरा आ जाए, सोसाइटी से भी लेते,
1: सोसाइटी में भी बहुत सारा मिल जाते। सिंचाई व्यवस्था कर गोट करी तो कतक पानी कर जरूरत पड़ेल का? एक बरखा रहे लो समय
0: अब वो रहर में हमन ये जो सिंचाई करके व्यवस्था जरूरत नहीं पड़े, हमला हो जाते आराम से,
1: माने बरखा
0: पानी में हो जाए।
1: कहते हैं कि रहर के संग और भी कुछ फसल लगाते हैं, लगा सकता है?
0: हाँ वहाँ हमन रहर के फसल में अगर रहर में अगर जगह थी तो बीच में मक्का भी लगा सकती थी, और रही वहाँ उड़द भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा रहर के संग उरद भी लगा सकते
0: हैं? हाँ रहर के साथ हम लोकल हमारे गांव के यहाँ तो बो देते हैं, तो उरद लभी साथ में बो देते हैं,
1: माने द्विफसली हो जाती
0: है।
1: तो बढ़िया उत्पादन है गांव में?
0: हाँ बढ़िया उत्पादन है।
1: एक बात बात करी कीड़ा मकोड़ा कर, तो रहर फसल में कहाँ का कीड़ा मकोड़ा देखे बार मिले?
0: तो कीड़ा एक थे आयल जो कि सुंडी वाला रहे रहर में, तो जो कि दाना बिठत रहे तो सुंडी वाला रहे लो रहर में बैठे तो चूस दे लो के।
1: तो अगर वैसा हो जाए तो कैसे करते?
0: दवाई लानते वो स्प्रे करके, मतलब कि बीज दुकान में बीज केंद्र में वहीं से मतलब कि दवाई मिल जाते, तो वहाँ से मिल जाए लगा देते।
1: कहिए गांव में कृषि विस्तार अधिकारी मन कर आना जाना होते कि नहीं?
0: कृषि विस्तार अधिकारी मन आते कभी कभार, लेकिन हमेशा जग तो कम ही आना पड़े, अंबिकापुर दरिमा अंबिकापुर यही सबसे हम
1: जानकारी लेते
0: रहते हैं।
1: और बात करी फसल उत्पादन कर बाद जैसे हो जाए तो ओला कौन तरह से कैसे रौरे जो है बाजार व्यवस्था बनाती?
0: तो बाजार व्यवस्था भाई लोकले में बेच देते, गाँव ही में दे देती जो है तो, और बाकी
1: तो ठीक ठाक रेट मिल जाता है,
0: ठीक ठाक मिल जाता
1: है, बढ़िया कीमत घलुक मिल जाती है। खेती किसानी में आजकल देखते हैं कि काफी बदलाव होगी सर, वैज्ञानिक विधि से लोग खेती करते हैं। राहुल नवाचार सोचा थी कि कैसे कुछ नवाचार करे, खेती किसानी करिए आगे बढ़े?
0: अभी सोचा थी नया करे के लिए, ऐसे अभी फिलहाल नहीं करे।
1: चला नया करे कर सोचे थे, यही विचार तुम ला आगे बढ़ाई। पारस भी आज बहुत अच्छा रोरे गोड बात करें, सुघर जानकारी देहन रहर कर खेती कैसे करना चाहिए। हमारे सुनने वाला किसान भैया बहनी मन भी राउर कर गोट ला सुन ही जरूर उनकर मन लागे कि भाई महू ये साल भाई बरखा के समय में रहर लगा हूँ। तो बड़ा अच्छा गोट बात करें, और राउर के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया।

0: हाँ तो देखिए भैया, तो रहीन फरसनाथ भगत बड़ा सुगर गोड बात करें है ना। हाँ खरीफ फसल कर तैयारी बढ़िया लेकिन करता है।
1: हो
0: बाकी मैं कहता रहीन भाई जोग लिखी कर बेरा।
1: अच्छा
0: ये वो चिट्ठी मोर हाथे आई से लंगाव ले भेजिया है राम किशन राम बली राम और अरुण पैकरा।
1: अच्छा का लिखता है?
0: इवन कहता है कि हम कुटकी लगाना चाहता हूँ।
1: अच्छा
0: और उकर समय कब है और उकर कैसे हम तैयारी करें?
1: तो बड़ा देखिए बढ़िया समय हो और समय तो आए भाई कुटकी लगाए कर। अब कुटमी यदि कुटकी किस्म की बात करते हैं तो देखिए जेके 8 है गुट किस्म है, BGA का है, BL6 आ है, BL6 जिला छत्तीसगढ़ कुटकी 1 कथे और BL4 भी आ है, ये छत्तीसगढ़ कुटकी 2 आए। तो भाई एक जो है कम जहाँ वर्षा हो वहाँ भी लगा सकते हैं और ऐसा ना अभी जैसे वैज्ञानिक मन कहता है कि तनिक बारिश भी कम हुई तो हिसाब से कुटकी या मोटा अनाज के फसल जो किसान भाई लगा सकते हैं और एक देखिए 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। और भाई जैसे लगाते हैं फसल 3-4 बार जुताई कर लें और बढ़िया जो है वो बीजा डाल दें और बीज की यदि मात्रा की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलो जो है मात्रा कुटकी के लगते हैं तो किसान भाई लगा सकते हैं और बढ़िया उत्पादन और बढ़िया मांग भी है।
0: अच्छा बाकी अब देखिए मंडी भावला बता दी। राम तेल जो है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, धान 2,190 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो 3,250 रुपये प्रति क्विंटल और तेल कर गोट करी तो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रही से। अब बात करी मौसम कर जानकारी कर तो मौसम कर जानकारी आज न्यूनतम जो है रही 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम जो है 34 डिग्री सेल्सियस, कल कर 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम जो है 36 डिग्री सेल्सियस रही।
1: और देखिए अब मैं कहता हूँ कि अब किसानवाड़ी से विदा लेकर समय भी होता है
0: तो चला जाए।

ग्रामीण श्रोता अभी सुन रहे थे चौपाल कार्यक्रम मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए फिर से सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इष्ट फरमाइश। श्रोताओं आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जान तेरे नाम के इस प्यारे से गीत से, जिसमें सैयद राही की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और आवाज दी है कुमार सानू और आशा भोसले ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम सरगवां उदयपुर जिला सरगुजा से शंभुदयाल नक्ष सिंह, अश्विनी कंवर एवं सत्यनारायण सिंह, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े, ग्राम केसकेला पोस्ट सलका जनपद भैया थान जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से शेष कुमार सिंह, ज्योति सिंह, सेजल सिंह, MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खन्ना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरो खुराना, SK पप्पी, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला सिपाही सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश, मध्य प्रदेश छिदवाड़ा बरेडी से लामसे मीना, लामसे तेजस, जय लामसे, हर्षिता लामसे, उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, जय जिनेन्द्र सोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार, ग्राम टोरोवाला जिला नवां शहर पंजाब से गंगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी मामिका वाड़ी थांदी, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है महाराज कृष्ण गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरो, ज्योति रानी, गुरमत कौर मन्नू, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन सा, पल्लवी सा, प्रखर सा, कुशल सा, नीति सा, सुरभि सा, स्विनी सा, मंगलाबेन सा और राजेंद्र जी सा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, सरलाही सुखना कहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी शर्मा, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, आपार ढिंगिया, मुजफ्फरपुर

हर्ष राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी, आप सभी की फरमाइश और पेश है कार्यक्रम का पहला गीत।

कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्ल वी बेबी बॉय हिमाक्ष। विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। कुरमा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मेरी ज्योति, जानवी दीक्षांश मेरी, गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र सिंह डोडी। सनावा से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाबिया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। प्रेषक सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेहर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनोप सिंह नाथावत। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती और बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अक्रम, बेबी जोई और गुड़िया खातून। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलसाद हुसैन, फातमा सोगरा। अमदान नामघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबी ज्योति ठाकुर। गांव चरोदा बार नवापारा अभियान जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से साधु सह जिला श्रीगंगानगर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। पुराना तालाब डुमराव से वलीबुल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी, सबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एच डी अंसारी, फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अधीबा। ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा। दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। आप सभी की फरमाइश को लीजिए फिर से फिल्म राजा हिंदुस्तानी से प्यारा सा गीत। गीत के गीतकार हैं समीर, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और आवाज़ है कुमार सानू, हल्का याग्निक के।

पर्दा पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, पंचकुला सेक्टर 9 से आंसू चौक, अश्विनी चौक, गोविंद चौक, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे ढींगरा, ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीता राम मरकाम, सितंबर मरकाम, अवरनाथ मंगल मूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, हीराराल प्रजापति, कविता मरकाम, आरती मरकाम, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ताज मंजिल, लकड़ बाजार, खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर गंगराडे, वंदिता गंगराडे, मोहम्मद हसनैन पवार, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालनम मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद नोयान, सैयद निजामुद्दीन, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, आदर्श नगर लोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, सैना शर्मा, म्यांगडी शर्मा, अनूपपुर मध्य प्रदेश अंजलि केवट, रूरानी केवट, कृष्णा केवट, चंचल केवट, करली चलगली रनहत, बलरामपुर छत्तीसगढ़ से बलराम मिश्रा, पूनम मिश्रा, उर्मिला मिश्रा, आद्विक मिश्रा, कुहू मिश्रा, मिठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्णा कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिका और बलबीर सिंह। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम इश्किया फरमाइश की अगली पेशकश फिल्म घातक से, जिसमें मजरूह सुल्तानपुरी की सदरेशिया को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन और अनु मलिक ने, आवाज़ दी है सुरेश वाडेकर और साधना सरगाम ने।

लिशियापीसी कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सलामी से आवाज़ कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का, शब्द रचना है समीर की। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, बटीडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अज्जू नारंग, मोहित और तानिया नारंग, ग्राम पंचायत परसा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश राजवाड़े, यम्या राजवाड़े, आदिया राजवाड़े, पार्थ राजवाड़े, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, उल्टी भगत, मोहम्मद अकरम अंसारी बरेली से, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने, भानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यसी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाड़ा हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्ना दूर किरत, गुरशब्द सिंह राहुल, बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, भीमा, वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से, सप्तरंग श्रोता परिवार से कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अबिका सोनवणे, विशाखा सोनपड़े, चंदौरा जिला फिरोजाबादा उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवा, मंजुलता कुशवा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवा, रामानंद कुशवा और साथी, मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अंसा इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुरा नई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नयमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

वलितपुर मढ़ा मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती उषादेव भारती गीतांजलि अनुराग दीप भगेलू यादव सुखराम सिंह मरावी ग्राम पंचायत कौशलपुर रामानुज नगर श्रीनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से झज्जर हड़िया से बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत

0: फिल्म फूल और कांटे के साथ ही सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइसी कार्यक्रम आपकी पसंद, माफ कीजिएगा, इंस्टा फरमाइस यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और इवनिंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश

0: निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9,00,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में

0: भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगनजी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
2: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
1: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.

अभी आप सुन रहे थे इवनिंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए फिर से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं फिल्म दूध का कर्ज से ये प्यारा सा गीत। आवाज़ है अनुराधा पौड़वाल और मोहम्मद अजीज के, संगीत निर्देशन है अनु मलिक का, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बनेगा,
0: और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन तिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।
2: शाम

0: क्योंकि यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: इतनी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर
0: पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत।

माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही

जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

0: सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे।
1: क्या

जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने

ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरे भैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मेरे भैया,
0: बात एक रात की,

0: हमारे राजकुमार।
1: तुमने पुकारा है, हम चले आए, जान है तेरे पर ले आए रे।
0: सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे

बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं, और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहाँ जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अभी से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna Tilwara taal mein nibaddh hai jiske bol hain Vaari jaun re tum pe. Drut rachna

0: मीना तीन ताल में है जिसकी भूल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक कर्महे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Rag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Rag Sohini. The Madhyalay composition

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही क्षण में हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक

तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की सांझकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। हम अपने प्रातःकालीन सभा के आकर्षणों के साथ कल प्रातः 6 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।